0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-350।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता:
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्रीराम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्रीराम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं, किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्री राम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ।

0: विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
9: बन के रहमत खुदा की सुनो, बन के रहमत।

जिसकी चाहत को इंसान को, जिसकी अजमत पे सब सर धरें, जिसकी चाहत हो इंसान को, जिसकी अजमत पे सब सर धरें, अरमा है खास और आम का, इसकी ख्वाहिश फरिश्ते करें, जिसकी चाहत हो इंसान को, जिसकी अजमत पे सब सर धरें, अरमा है खास और आम का, इसकी ख्वाहिश फरिश्ते करें।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव,
11: सारण प्रमंडल की शान,
10: गोपालगंज की धड़कन
11: और अपने भाषा की पहचान,
10: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434003 62002434003।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: रामू हरिया कल तैयार रहियो लो, पराली जलाए जले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये है बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संतोष यादव हत्याकांड में मीरगंज के थाना अध्यक्ष को किया गया निलंबित। बैकुंठपुर हत्याकांड में 4 आरोपी भेजे गए जेल। मीरगंज के पीपरा में हुई फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केमिकल से नोट बनाने वालों के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। और जिंदा महिला को मृत बताकर जमीन हड़पने वाले 14 लोगों पर केस दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव में हुई संतोष यादव की हत्याकांड को लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मीरगंज के थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को निलंबित कर दिया। यह मामला मूकबधिर संतोष यादव की गोली मारकर की गई हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले में पता चला कि थाना अध्यक्ष ने लापरवाही की और इस कांड में 3 निर्दोष लोगों को हत्याकांड के आरोप में जेल भेज दिया, जबकि इस कांड के दोषी पुलिस को चकमा दे रहे थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में जैसे ही पुलिस अधीक्षक ने जांच करवाया और मामला सामने आया तो थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को भी लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया गया और जो 3 निर्दोष लोग इस मामले में जेल गए हैं उन्हें अब जेल से रिहा कराने के लिए पुलिस काम कर रही है। साथ ही इसमें जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें अब पुलिस जेल भेज रही है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद और साजिश को लेकर संतोष यादव और उसके भाई राम किशोर यादव की पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद के कारण राम किशोर यादव अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहता था और पड़ोसियों के साथ चल रहे पुराने भूमि विवाद में उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई राम किशोर यादव ने ही बड़का जिगना गांव के रहने वाले अपने पुराने दोस्त राज किशोर को हत्या के लिए बुलाया। घटना वाली रात को करीब 1:30 बजे राज किशोर को घर लाया गया और राज किशोर ने ही संतोष यादव को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या के बाद रामकिशोर करीब आधे घंटे तक इंतजार करता रहा ताकि मौत से वह पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। इसके बाद डायल 112 को फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी गई ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए शूटर राजकिशोर और मृतक के भाई रामकिशोर यादव को अब गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज दिया। जबकि जो तीन निर्दोष लोग पहले से नामजद आरोपी बनाते हुए जेल भेजे गए उन्हें अब पुलिस निर्दोष साबित कर इन्हें जेल से रिहा कराने के लिए काम कर रही है। और इसी मामले में मीरगंज के थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि 3 मई को मीरगंज के जिगना गांव में मुक बधिर संतोष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मदन कुमार, हरिनंदन यादव और हरिकेश यादव को नामजद आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जब तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच करवाई तो पूरा मामला ही बदल गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
3: दिनांक 3 मई को जिगना में मीरगंज थाने में संतोष कुमार थे, ये चूंकि मूक थे, बोलने में असमर्थ थे, तो इनकी गोली मारकर हत्या हुई थी 3 तारीख को रात में। इस मामले में जो मृतक थे उनके भाई रामकिशोर यादव के द्वारा FIR कराया गया था और FIR में इनके द्वारा अपने जो पड़ोसी हैं मदन कुमार, हरिनंदन, हरिकेश, इन तीनों का नाम दिया गया था और बताया गया था कि भूमि विवाद के चक्कर में इनके भाई को मार दिया गया। उन तीनों से तत्काल थाना प्रभारी ने उन तीनों को पकड़ा था और उसको मीरगंज थाना से जेल भेज दिया गया था। लेकिन हम लोग उसका अनुसंधान कर रहे थे, SIT बनाई हुई थी, पहले ही प्राथमिक तौर पर संदेह लग रहा था लेकिन वादी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, इन्हीं तीनों ने मारा हुआ है। इसके बाद इसमें SIT बनाई गई, थी इंस्पेक्टर हरिंदर और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर बाजीगर के नेतृत्व में। इन लोगों ने इस कांड का अनुसंधान किया 3 तारीख से लेकर अभी तक लगातार, और इस कांड के अनुसंधान में ये बातें स्पष्ट हुई कि कैसे ये घटना हुई थी। क्योंकि जो वादी ने जिन लोगों पर आरोप लगाया था उन लोगों की स्थिति रात में वो अपने घर पे ही थे और उन लोगों की कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई थी। तो फिर जब तकनीकी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूछताछ हुई, तो वादी का जो मृतक का जो भाई है रामकिशोर यादव, उसने ही सारी घटना कराई थी। ये पूरी जांच में और पूछताछ में स्पष्ट हुआ। उसने बताया कि उसकी जो उसका जो भाई था जो मरा संतोष कुमार, उसकी लड़ाई हुई थी और रामकिशोर की पत्नी को उसने कुछ दिन पहले मारा पीटा था। वो मूक था और उसको एक तरीके से रामकिशोर रास्ते से हटाना चाह रहा था और साथ ही साथ हटाने के क्रम में रामकिशोर का मुख्य लक्ष्य था कि अपने जो 3 पड़ोसी हैं जिनसे जमीन विवाद चल रहा, इन तीनों को हत्या केस में फंसाया जाए, फिर उसकी जमीन पर कब्जा किया जाए। इसलिए उसने ये पूरी षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक पुराने दोस्त राजकिशोर से संपर्क किया। राजकिशोर जो है वो भी मीरगंज का ही रहने वाला था, बड़का जिगना का, और राजकिशोर ने इस घटना को रामकिशोर यादव के साथ मिलकर अंजाम दिया। राजकिशोर ही अपने पास से हथियार लेकर के आया था, गोली लेकर के आया था और रामकिशोर जाकर के राजकिशोर को लेकर के आया मोटरसाइकिल पर। रात में 1:30 के आसपास ये राजकिशोर ने गोली चलाई, मृतक को गोली लगी और संतोष कुमार की तुरंत इलाज के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। पूछताछ में जब ये सारी बातें आई कि मृतक का भाई ही संदिग्ध है तो तब पूछताछ हुई तो उसने ये भी बताया कि मरने के बाद उसने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया ताकि ये पूरी तरह मर जाए और फिर पुलिस को 112 को उसने कॉल किया। तो इस घटना में प्रयुक्त 1 देसी कट्टा जिससे ये घटना की गई थी, जिंदा कारतूस है, वो बरामद कर लिया गया है। जो इस कांड का सूचक था भाई मृतक का रामकिशोर यादव और जो शूटर था राजकिशोर सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। जो 3 निर्दोष जिनसे जिनके साथ रामकिशोर यादव का विवाह था उन तीनों को जेल से मुक्त कराने के लिए न्यायालय को प्रतिवेदन दिया जा रहा है। इसमें सही अनुसंधान हुआ है और सही अनुसंधान अब जाकर हुआ है इसमें, तो इसके लिए इंस्पेक्टर हरिंदर को 10,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और साथ ही इसमें अनुसंधान में थानाध्यक्ष मीरगंज की लापरवाही सामने आई है, उनके द्वारा पूछताछ नहीं की गई। जैसे ही वादी ने नामजद अभियुक्त किए तो बस केवल नामजद करने के आधार पर उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया था। वरीय पदाधिकारियों को भी नहीं सूचित किया गया था, इसलिए थानाध्यक्ष मीरगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसी भी स्थिति में, किसी भी कांड में कोई भी वादी अगर किसी नामजद अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तारी का दबाव बनाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुसंधान
7: पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया कि आपराधिक घटनाओं में बिना जांच किए किसी भी नामजद व्यक्ति को दबाव में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच में लापरवाही या गलत अनुसंधान करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की हिदायत दी गई। पुलिस की इस तरह की जांच से 3 निर्दोष जेल से अब रिहा होंगे और असली कातिल जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और एक व्यक्ति की भाला गोद कर हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच करने के बाद साक्ष्य एकत्रित कर अब इसमें आरोपियों को सजा दिलाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में जिन चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें पंकज कुमार पिता शिव प्रसाद, मुन्ना कुमार पिता कमलेश मुखिया और कन्हैया प्रसाद पिता कमलेश मुखिया, ये तीनों साकिन प्यारेपुर थाना बैकुंठपुर के निवासी हैं और चौथा अर्जुन कुमार पिता बलि प्रसाद साकिन आशा खैरा थाना बैकुंठपुर का रहने वाला है। अब इन चारों को हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के पीपरा खास तिवारी टोला में बांस बल्ला जनरल स्टोर पर दो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने तथा अवैध हथियार से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना स्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए FSL टीम ने भी जांच की। बताया जा रहा है कि एक गोली का खोखा भी बरामद हुआ है जिसे जब्त किया गया है। जिन दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक अमरीश कुमार यादव पिता जितेंद्र यादव और दूसरा अमित शाह, दोनों हरखौली पश्चिम टोला थाना मीरगंज के निवासी हैं। अब इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक केमिकल से नोट बनाकर ठगी करने वाले लोगों का जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसको लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
3: आसिनी गांव में कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहां पर कुछ जो जालसाजी और ठगी करने का ग्रोह है जो कि नोटों को डबल करके बेच देता है, कई लोगों को इन्होंने पूरे अलग अलग राज्यों में देश भर के हिस्सों में ये लोग हाथ की सफाई करके कुछ केमिकल्स का उपयोग करके सादे कागज़ को नोट में बदलने का झांसा दे करके रुपया दुगना तिगुना करने का लालच ये लोग देते थे लोगों को। और इस तरह का एक गिरोह जो है वो बैकुंठपुर थाना के सिंहासिनी गांव में आज एकत्रित हुआ। ये लोग कुछ काम करने वाले हैं इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद SDPO सिद्धवलिया राजेश जी के नेतृत्व में ये SIT बनाई गई थी। राजेश जी SDPO सिद्धवलिया, साथ ही SHO सिद्धवलिया, SHO मोहम्मदपुर, SHO बैकुंठपुर, इन लोगों ने रात में रेड की। रेड के पश्चात वहाँ से करीब 95 लाख रुपए के नोट मिले हैं, 500-500 की गिड्डियाँ हैं। इसमें अभी संदेह हम लोगों को भी हो सकता है इसमें कुछ जाली नोट भी होंगे तो इनकी भी जांच की जाएगी। और साथ में इसके साथ जो नोटों के बीच में जो सफ़ेद कागज़ पेपर लगाते थे जिसको एक कन्वर्ट करके झांसा देकर व्यक्तियों को फंसाते थे वो बरामद हुआ है भारी मात्रा में, 95 लाख रुपये बरामद हुए हैं। और जिस एसिड और बेसिक एजेंट्स का ये लोग उपयोग करते थे केमिकल्स का जिसके माध्यम से कागज़ का कलर चेंज होता था ताकि लोग झांसे में आ जाएं वो बरामद हुआ है और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। कुल 8 लोग उस कमरे में मौजूद थे। उन सब से पूछताछ हो रही है। उन सब से पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये जो गिरोह है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमानपुर से रिलेटेड है और वहाँ का रहने वाला फरहद जो है वो आया हुआ था बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में दिलशेर नाम का एक व्यक्ति है जो इस काम को बहुत पहले से करता था। वो झाड़ फूक और तांत्रिक टाइप की चीज़ें करता था ताकि लोगों को झांसा, जो भी लोग कष्ट में होते थे, जो भी लोग परेशान होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे और उनको झाड़ फूक के माध्यम से कुछ ऐसा बताते थे कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनसे टच में आते थे, फिर उनकी प्रॉब्लम को समझ के बोलते थे कि ऐसा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा जितना पैसा दोगे उसका दोगुना हो जाएगा। हमारा एक फरहद भाई है वर्धमानपुर का और इसका दिलशेर का जो भतीजा था वो इस काम में इसके सहयोग करता था। ये 3 लोग मिलकर के और इनके साथ इनके जो को ड्राइवर थे, ये 5 लोगों की पूरी गैंग थी। ये अलग अलग जिलों में इन लोगों ने कई लोगों को ऐसा धोखा दिया हुआ है और धोखा दे करके लोगों के पहले क्या करते थे, लोगों को डेमो दिखाते थे। जितने भी लोग मिले हैं इन सब की अभी पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारे विक्टिम भी हैं जो स्वयं प्रताड़ित हैं, जो वहाँ आए हुए थे इसलिए कि इनके जो पहले के ठगे हुए के पैसे थे वो शायद और इधर जो है बरामद हो सकते हैं और इनको फायदा मिल सकता है, उनके पुराने जो पैसे ठगी हो गई उसकी रिकवरी हो पाए, उस आस में भी कुछ लोग आए हुए थे। और ये लोग डेमो देते थे पहले इन सब लोगों को बुला करके। कमाल खान नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें मेन डेमो देता था, वो इन लोगों को ले जाता था मोतिहारी, कभी नेपाल, मोतिहारी और नेपाल के अलग अलग होटलों में लोग रुकते थे, वहाँ पे हाथ की सफाई दिखाते थे कि देखो कैसे एक गिड्डी 500 के लिए और उसके दो गिड्डी बना दिए, ऐसे ही तुम लेकर के आओ। तो लोग कहते थे कि नहीं भाई अभी हम लेकर आएंगे पैसा, तो कहते थे नहीं पूरा पैकेज लो तुम, बड़ा पैसा इकट्ठा आएगा तभी काम होता है, 90 लाख, 95 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस टाइप का वो करते थे। तो फिर ये लोग मिलकर आपस में ढूंढते थे कि हम 5 लोग हो जाते हैं तो शायद हम 500 के इकट्ठे ट्रिपल हो जाए, तो लालच भी था इसमें, लोगों को लालच रहता था अपने पैसे डबल ट्रिपल होने का। और ये लोग हाथ की सफाई और झांसा दे करके केमिकल का उपयोग करके कलर, जो कपड़ा कागज़ है उसका कलर चेंज करने का जो झांसा होता है और हाथ की सफाई, इसमें बहुत बारीकी से लोग करते थे। पैसा डबल नहीं होता था, पैसा उतना ही रहता था, और रादर जो पैसा आदमी लेकर आता था डबल कराने के लिए उस पैसे को ये बाद में उसी से झांसे के नाम पे ले जाते थे कि अभी तो ये इसमें से जो केमिकल है वो सूखा है, कच्चा है, और अभी इसमें 2-4 दिन और लगेंगे, रुकिए, धीरे धीरे धीरे धीरे करके और वो पैसा पूरा गायब कर देते थे। तो ये
7: इधर बैकुंठपुर के कतालपुर गांव में एक महिला को सरकारी कागजों में मृत दिखाकर जमीन हड़पने की कथित साजिश का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर प्रमिला कुंवर उर्फ प्रमिला देवी ने बैकुंठपुर थाने में 14 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि प्रमिला देवी की शादी सुशील नाथ पांडे से हुई थी। शादी के बाद उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी और पुत्र प्रिंस कुमार का जन्म हुआ। कुछ वर्ष पूर्व उनके पति की मृत्यु हो गई। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद कुछ लोगों ने उनके पुत्र को अपने विश्वास में लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों में जालसाजी की। महिला का कहना है कि जमीन हड़पने के नियत से सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और उनकी जगह मालती देवी का नाम दर्ज करा दिया गया, जबकि प्रमिला देवी जीवित हैं। अब उनके आवेदन पर पुलिस ने 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों से आज कई आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में भेड़िहारी टोला रोड पर, जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पुलिस ने छापेमारी की और यहां से धनु कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार किया। यह हजियापुर पोखरा थाना नगर का रहने वाला है और महेश रावत का पुत्र है। इसके पास से 104 पीस शराब की पैकेट और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल मिली है। मानसून से पहले डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव को लेकर जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। सदर अस्पताल सहित जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों पर और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू से बचाव एवं रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सभी संबंधित कर्मियों ने डेंगू नियंत्रण को लेकर शपथ भी ली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच डेंगू के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और संभावित संक्रमण को समय रहते रोकना बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संतोष यादव हत्याकांड में मीरगंज के थानाध्यक्ष को किया गया निलंबित। बैकुंठपुर हत्याकांड में 4 आरोपी भेजे गए जेल। मीरगंज के पीपरा में हुई फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केमिकल से नोट बनाने वालों के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। और जिंदा महिला को मृत बताकर जमीन हड़पने वाले 14 लोगों पर केस दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
9: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
8: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
9: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
8: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
8: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
10: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
11: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
14: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
14: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
15: ठक ठक।
16: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
17: अच्छा, मिला ही नहीं
16: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
16: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
12: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
18: सुनो दिल से।
19: दोस्तों, यह है मेरा ओरिजिनल शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का वो सफर जिसमें आप और मैं चलते हैं यात्राओं पर और मिलते हैं उन पात्रों से, उन कहानियों से जो शायद हम बचपन में सुना करते थे पर कहीं पीछे छोड़ आए। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी, ऐसी भावनाओं की कहानी जिनसे आप में से बहुत से लोग रिलेट करेंगे। एक ऐसे किरदार, एक ऐसे पात्र की कहानी जिसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया, कहा नहीं गया, इसीलिए ये कहानी सुनानी जरूरी है। चलिए शुरू करता हूं ये कहानी जिसका नाम है एक थी उर्मिला। अयोध्या के राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ राजमहल ही नहीं, पूरी अयोध्या ही सूनी थी, खामोश नजर आ रही थी। न बच्चों के खेलने का शोर था, न सरयू के तट से पनिहारिनों की हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। पूरे राज्य ने जैसे उदासी की कोई चादर ओढ़ ली थी, और इस उदासी की वजह थी राजकुमार राम का 14 साल के वनवास पर जाने का फैसला। राम की सौतेली माँ कैकई ने जब उन्हें वन जाने के लिए कहा, तब उन्होंने उनकी बात मानने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। राम के साथ साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जा रहे थे। एक ही दिन में पूरा राज परिवार टूटता बिखरता नजर आ रहा था। राजा दशरथ खुद को संभाल नहीं पाए थे, वो राम का नाम लेते लेते बेहोश हो रहे थे। रानी कौशल्या और सुमित्रा कभी अपने पति को संभालती तो कभी अपने बेटे राम और लक्ष्मण को वन जाने से रोकने की कोशिश करती। राजमहल के हर कोने हर कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर। और वो कमरा था राजकुमार लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का। मैंने देखा था जब कुछ देर पहले लक्ष्मण ने यहां आकर उर्मिला से अपने वन जाने की बात कही।

पति के फैसले में उनके साथ थीं या उनसे नाराज। फिर कुछ देर बाद जब उर्मिला वापस कमरे में लौटी तो उनके हाथ में रुद्राक्ष की एक माला थी। वो सीधा चौकी पर बैठकर अपने बालों का जूड़ा बनाते लक्ष्मण के पास गईं और बिना कुछ कहे रुद्राक्ष की वो माला उनके जूड़े में लपेटने लगीं। लक्ष्मण अपने सामने लगे शीशे में उर्मिला के चेहरे को एक टक देखते रहे। शायद अपनी पत्नी के मन की दशा को उनके चेहरे के भावों से समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी लक्ष्मण को उर्मिला के चेहरे पर न उदासी के भाव दिखे और न ही कोई नाराजगी। वैसे सच कहूं तो मुझे उस वक्त उर्मिला में उस फौजी की पत्नी का अक्स नजर आ रहा था जो सरहद पर जाते अपने पति को लेकर फिक्रमंद तो होती है पर कभी जाहिर नहीं करती, जिसका मन पति से दूर रहने के दर्द से भरा होता है पर वो अपने आंसुओं को अपने पति की कमजोरी नहीं बनने देती। उर्मिला भी शायद यही कोशिश कर रही थी, पर जब लक्ष्मण ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, उर्मिला तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम्हारा ये मौन हमें पीड़ा दे रहा है, तब उर्मिला कुछ पल के लिए कमजोर पड़ती दिखी। वो अपने मन का सारा दर्द, पति के लिए फिक्र, उनसे दूर होने की पीड़ा, सब कुछ कह देना चाहती थी, पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को छिपाने के लिए वो लक्ष्मण की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, सुमित्रा नंदन, आपके निर्णय का विरोध होता तो आपके साथ वन जाने के लिए तैयार खड़ी होती। उर्मिला के इस जवाब ने लक्ष्मण के सर से जैसे कोई बोझ उतार दिया था। अब वो बिना किसी अपराध बोध के अपने भाई भाभी का साथ देने वनवास पे जा सकते थे। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण उर्मिला के सामने गए और उनको अपनी बाहों में भर लिया। उर्मिला ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वो उस स्पर्श को और उस पल को कैद करके रख लेना चाहती थी, ताकि अगले 14 बरस इन यादों के सहारे खुद को टूटने और कमजोर पड़ने से बचाती रहे, क्योंकि वो जानती थी कि उनका टूटना बहुत से लोगों को बिखेर देगा और उर्मिला ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी। शायद तभी जब अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से दूर वन के लिए निकल रहे थे, तब हर अयोध्यावासी की आंखें नम थीं, सिवाय उर्मिला के। मैं देख रहा था कि वो कभी रो रो कर बेहाल हुई रानी कौशल्या और सुमित्रा को संभाल रही थी, तो कभी बेहोशी की हालत में अपने कमरे में लेटे राजा दशरथ को, वो जो बार बार होश आने पर राम को अपने सामने लाने की जिद कर रहे थे। उर्मिला हर बार मुस्कुराते हुए उन्हें राम के वापस आने का भरोसा दिला रही थी, और दशरथ उनकी आंखों में झलकती उम्मीद पर भरोसा करके वापस बिस्तर पर लेट जाते थे। वैसे उर्मिला से दूर होना लक्ष्मण के लिए भी आसान नहीं था। उन्हें कभी पेड़ों से छन कर आती हवा में उर्मिला की हंसी सुनाई देती, तो कभी रात के सन्नाटे में पलकें बंद करते ही उनका चेहरा दिखता। शायद इसीलिए लक्ष्मण ने रात को सोना ही छोड़ दिया था। वो दिन भर राम और सीता की सेवा में लगे रहते और रात भर जाग कर कुटिया के बाहर पहरा देते थे। लेकिन जो मन में बसा हो उसे भुलाना आसान नहीं होता। तभी तो उस दिन जब वो लकड़ियां लेकर कुटिया की ओर लौट रहे थे तो अचानक ही तालाब में खिले कमल को देखकर रुक गए। उन फूलों ने लक्ष्मण को उर्मिला का मुस्कुराता चेहरा याद दिला दिया। शादी के बाद उन्होंने ऐसे ही कमल पुष्पों की माला उर्मिला को तोहफे के रूप में दी थी। जानते थे कि उर्मिला को कीमती गहनों से ज्यादा फूलों से प्यार था और कमल का फूल तो उन्हें सबसे प्रिय था। फिर चाहे उर्मिला कितनी भी नाराज हो, कमल के फूलों को देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। पर शायद लक्ष्मण ये नहीं जानते थे कि उनके वन जाने के बाद मुस्कुराहट उर्मिला के चेहरे का रास्ता भूल गई थी। मैंने देखा था उर्मिला को बागीचे में पौधों को पानी देते। साज श्रृंगार से प्यार करने वाली उर्मिला के बाल बिखरे हुए थे, न बालों में गजरा था, न आंखों में काजल और न होठों पे कोई लाल रंग। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से खुद को आईने में देखा ही ना हो।

0: वैसे उर्मिला ने अपने लिए वक्त ही कहां छोड़ा था। वो अपना सारा वक्त राजमहल के इंतजाम में लगा देती थी। राज परिवार के खाने से लेकर साफ सफाई तक के सारे काम उर्मिला अपनी निगरानी में करवाती थी और उस दिन बागीचे में पानी देने भी खुद ही आ गई थी। उर्मिला ने खुद को तो भुला दिया था पर लक्ष्मण की याद हर पल हर क्षण उनके साथ थी। तभी तो पौधों में पानी देते देते बागीचा कब तालाब में तब्दील होने लगा इसका पता उर्मिला को तब चला जब दूर खड़ी एक दासी ने उनको आवाज दी। उर्मिला अपने भीगे हुए कपड़े बदलने जब कमरे में पहुंची तो देखा एक दासी उनके बिस्तर की चादर बदलने जा रही थी। उन्होंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? दासी घबराकर पीछे हट गई और सर झुकाकर बोली, राजकुमारी जी, हम तो बस ये चादर बदल रहे थे। नहीं, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 वर्षों तक हमें इस कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, उर्मिला ने कुछ तेज आवाज में कहा था। दासी उसी वक्त कमरे से बाहर चली गई। उर्मिला ने उस आधी बिछी और आधी बिखरी चादर को फिर से ठीक किया और गीले कपड़े बदल कर उस पर लेट गई। लक्ष्मण को वन गए कई दिन बीत गए थे पर चादर से आती उनके इत्र की खुशबू उर्मिला को आज भी महसूस हो रही थी। यही नहीं, वन जाने से पहले लक्ष्मण ने जो कपड़े पहने थे वो आज भी संदूक के ऊपर वैसे ही रखे थे। उर्मिला ने न उनको धोबी को धोने के लिए दिया था और न ही संदूक के अंदर रखा था। सिर्फ ये चीजें ही नहीं, कमरे की खिड़की के पास कुछ रंग और एक अधूरी तस्वीर भी रखी थी। ये तस्वीर लक्ष्मण की थी जिसे उर्मिला खुद बना रही थी। रंगों से बहुत लगाव था उनको। एक दिन जब लक्ष्मण ने उनको चिढ़ाते हुए कहा, हम तो आपको चित्रकार तभी मानेंगे जब आप हमारा कोई चित्र बनाएंगी, बस उसी दिन से उर्मिला छिप छिप कर ये तस्वीर बना रही थी। सोचा था कि शादी की अगली वर्षगांठ पर लक्ष्मण को उपहार के तौर पर देंगी। उस वक्त नहीं जानती थी कि अगले 14 साल शादी की हर वर्षगांठ पर वो अकेली होंगी, अधूरी होंगी, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। उर्मिला बिस्तर पर लेटे लेटे उस तस्वीर को देख रही थी। उसी वक्त एक दासी घबराई हुई दौड़ते हुए उनके पास आई। राजकुमारी, वो महाराज, क्या हुआ पिताश्री को? दासी के मुंह से महाराज दशरथ का नाम सुनते ही उर्मिला बिस्तर से उठ गई। दासी उनके पूछे सवाल का कोई जवाब देती इससे पहले ही वो दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उर्मिला जब महाराज दशरथ के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो बिस्तर से नीचे गिरे हुए थे। रानी कौशल्या और सुमित्रा सेवकों की मदद से उनको उठाकर बिस्तर पर लिटा रही थीं। उर्मिला ने बिना एक पल गंवाए राज्य वैद्य के पास बुलावा भेज दिया और फिर खुद अपने ससुर के सरहाने बैठकर उनकी हथेली मलने लगी। आंखें बंद किए दशरथ बस राम का नाम लिए जा रहे थे। उर्मिला ने पहले की तरह एक बार फिर उनको राम के वापस आने का भरोसा दिलाना चाहा, पर इस बार देर हो चुकी थी। एक आखिरी सांस के साथ ही राजा दशरथ की हथेली उर्मिला के हाथों से फिसल गई। 4 पुत्रों के होते हुए भी जब राजा दशरथ ने आखिरी सांस ली उस वक्त उनके पास कोई नहीं था। राम और लक्ष्मण वनवास पे गए थे और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल। पिता की मौत का समाचार मिलने पर भरत जब अयोध्या लौटे तो यहां एक और दुख उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें जब ये पता चला कि उनकी मां ने उनको राजा बनाने के लिए उनके बड़े भाई राम को वनवास पे भेज दिया तो वो बहुत नाराज हुए। अपनी मां के किए अपराध के लिए भरत खुद को ही दोषी मानने लगे। उन्हें पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो पूरे परिवार के साथ वन जाएंगे और राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। महाराज दशरथ की मौत से दुखी परिवार को खुशी की एक किरण नजर आई थी। कौशल्या और सुमित्रा की आंखों में अपने बेटों से मिलने की चमक साफ दिख रही थी। एक उम्मीद उर्मिला के मन में भी जागी थी, लक्ष्मण और उनका वियोग खत्म होने की उम्मीद। उस सुबह उर्मिला बहुत दिनों बाद आईने के सामने बैठी थी। दासी जब उनके बाल बनाने आई तो उन्होंने उसे रोक दिया, फिर खुद ही अपने बालों में बेला के फूलों की माला सजाने लगी। आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग, उस दिन उर्मिला एक नए ही रूप में दिख रही थी। जब वो अपने कमरे से बाहर आईं तो उन्हें देखते ही सुमित्रा ने उनके माथे पर काला टीका लगा दिया था। डर रही थीं कि कहीं उनकी बहू की उम्मीद उसकी खुशी को किसी की नजर न लग जाए। चार दिनों की यात्रा के बाद पूरा राज परिवार चित्रकूट पहुंचा था। वहां वन में राम अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। सीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थीं और कुछ ही दूर पर लक्ष्मण कुल्हाड़ी से लकड़ियों के टुकड़े कर रहे थे। वहां पहुंचकर जब भरत और पूरा परिवार राम को अयोध्या चलने के लिए मना रहा था, तब सबकी नजरें बचाकर उर्मिला लक्ष्मण के पास पहुंच गईं और फिर अपनी ओढ़नी के कोने से उनके माथे पर आया पसीना पोंछने लगीं। उस वक्त न लक्ष्मण ने उनसे कुछ कहा और न उन्होंने लक्ष्मण से कुछ पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने एक दूसरे की आंखों से ही एक दूसरे के दिल का हाल जान लिया था। कुछ देर बाद उर्मिला ने अपने साथ लाए थैले से एक बर्तन निकाला और लक्ष्मण की ओर बढ़ा दिया। लक्ष्मण ने कपड़े से ढके उस बर्तन को खोलकर देखा तो उसमें खीर थी, उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन। उन्होंने बर्तन को वापस कपड़े से ढका और एक और रख दिया। फिर उर्मिला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भैया और पिताजी को दिया वचन पूरा किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। हमें 14 वर्ष बीतने का इंतजार करना ही होगा। ये सब कहते हुए लक्ष्मण की आंखें लगातार उर्मिला की आंखों में उतर आई तकलीफ को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, पर वो एक बार फिर असफल रहीं। ये जनक दुलारी अपनी खुशियां तो सबसे साझा कर लेती थीं, पर अपने मन में भरा दर्द किसी तक नहीं पहुंचने देती थीं। उधर भरत राम को वापस चलने के लिए मनाने में नाकाम रहे। पूरा परिवार जिस उम्मीद से वहां गया था वो टूट गई। सभी को खाली हाथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा सिवाय उर्मिला के। उर्मिला के हाथ में लक्ष्मण का दिया एक मोरपंख था। लक्ष्मण ने ये मोरपंख वापस लौटती उर्मिला की हथेली में धीरे से थमा दिया था। वो सिर्फ एक मोरपंख नहीं था, लक्ष्मण के उनके करीब होने का एहसास था जो अब हर वक्त उर्मिला के साथ रहता था। वो कभी कभी उसे अपने गालों पर फिराती तो कभी सरहाने रख के सो जाती। कमरे में रखी उस अधूरी तस्वीर में भी वो उस मोरपंख से रंग भरने लगी थी। लक्ष्मण के वहां न होने पर भी उर्मिला ने उनके होने का एहसास ढूंढ लिया था। लेकिन सुमित्रा को अपनी बहू की खामोशी, उसका हर वक्त खुद में खोए रहना परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन वो अपने मन की बात कहने उर्मिला के पास पहुंच गई। उस वक्त उर्मिला कमरे की खिड़की के पास खड़ी दूर दक्षिण दिशा की ओर देख रही थी। सुमित्रा धीरे से उनके करीब गई और अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। पुत्री, तुम लक्ष्मण से बिछड़ने की पीड़ा बाहर क्यों नहीं आने देती? अपने आंसुओं को बांध कर क्यों रखा है? निकल जाने दो सारा दुख, मन शांत हो जाएगा। सुमित्रा के सवालों को सुनकर उर्मिला कुछ देर खामोश रहीं, फिर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मां, आपके पुत्र तो हर समय हमारे मन में है, तो फिर बिछड़ना कैसा, आंसू किस लिए? और दक्षिण दिशा तो हर समय हमारे नेत्रों के सामने है, फिर उनसे दूरी कैसी? बस इतना कहकर उर्मिला फिर से खिड़की की ओर बढ़ गईं और उनकी आंखें दक्षिण की ओर देखने लगीं। उस दिशा की ओर ही तो था चित्रकूट, जहां लक्ष्मण राम सीता के साथ वनवास के दिन काट रहे थे और वो इतनी दूर से ही उनको अपने करीब महसूस कर रही थीं। खुद को दी हुई चुनौती उर्मिला ने जीत ली थी, अपने वियोग को अपने प्रेम से हरा दिया था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं इसमें अपनी जिंदगी भी थोड़ी थोड़ी नजर आई होगी। और अगर किन्हीं कारणों से आप अपने प्रिय से, अपने पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति या पत्नी से दूर रहते हैं, तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी थोड़ी सी जिंदगी नजर आई होगी। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, हम फिर से चलेंगे ऐसी ही एक और नई यात्रा पर, जिसमें मैं आपको एक और माइथोलॉजिकल कहानी सुनाऊंगा। क्योंकि ये है टाइम मशीन।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
9: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
11: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
11: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। एक

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
5: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम 8:00 से 2:00 PM तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए।

0: वर्मा ने किया। धीरेन्द्र वर्मा जहां एक तरफ हिंदी विभाग के उत्कृष्ट व्यवस्थापक रहे, वहीं दूसरी ओर के आदर्श अध्यापक।
1: ये श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
5: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
10: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
10: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
9: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
11: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
9: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
12: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद स्वीडन ऑन डिफेंस।
13: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने के दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
9: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
14: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
15: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
14: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
9: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
16: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
9: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमरे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
13: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
9: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
17: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
9: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिन्दुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
19: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
18: कहाँ पर?
19: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
18: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
19: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
18: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छ वही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
20: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
21: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
22: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
21: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
23: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
24: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
25: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
26: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
27: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
28: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
27: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
28: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
27: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
29: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
30: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
29: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
30: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
29: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
30: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करें 87-894-18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0975-75।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। गौरतलब है कि प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। नालंदा के राजगीर में आज से 1 माह तक चलने वाला मलमास मेला शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस राजकीय मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि आज ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अध्यात्म, आस्था और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला के लिए राजगीर पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए आवासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर के गर्म जल के कुंडों, विशेषकर ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और पवित्र नदियों में स्नान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मान्यता है कि मास के दौरान यहां स्नान करने से पापों का क्षय होता है, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 3 वर्ष पर आयोजित होने वाला यह पौराणिक मेला सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 500 CCTV और AI आधारित कैमरे लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में कृषि अवसंरचना कोष के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के सभी ऋणों पर प्रतिवर्ष 3% की दर से ब्याज में छूट दी जाएगी। यह सुविधा अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुंगेर के पोलो मैदान में अत्याधुनिक फुटबॉल टर्फ मैदान का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिले में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से जिला परिषद भवन के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवनों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण न केवल कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है बल्कि आम जन के बीच भी सकारात्मक संदेश देता है। पटना उच्च न्यायालय ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संचालित होने वाली वैकेशनल बेंच की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कल से 4 जून तक कार्य दिवसों में वैकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने कल से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पहल से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों को सुलभ और समयबद्ध आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा। इधर परिवहन विभाग अब दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में इन बसों का परिचालन पटना जिले में किया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक व्यवस्था में नई जिम्मेदारी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 34 अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार को पटना जिला और संतोष कुमार मल्ल को भोजपुर जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार गया जिले के लिए रॉबर्ट एल चौंतू, सारण के लिए पंकज कुमार और मधुबनी के लिए नर्मदेश्वर लाल को प्रभारी सचिव बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें गया जी में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और पेट्रोल पंप खाली होने का दावा किया गया है। HPCL ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो भ्रामक, निराधार और वास्तविकता से परे है। कंपनी ने कहा है कि वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह गलत है और पेट्रोल पंपों पर वास्तविक स्थिति से पूरी तरह विपरीत है। HPCL ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित गुमराह करने वाली ऐसी खबरों पर विश्वास न करें। कंपनी ने लोगों से आधिकारिक सूचना माध्यमों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में कल से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि जिले के किशनगंज, त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान पटना, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद सहित कई जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर इस दिवस पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर और एक चारपहिया वाहन की टक्कर में एक ही परिवार के 4 समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के गयासपुर के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार लोग सीवान जिले से हरियाणा के फरीदाबाद जा रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जमुई जिला स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित थी। लखीसराय जिला प्रशासन ने बाईपास स्थित रेल ओवर ब्रिज के स्पैन में आए दरार को देखते हुए लखीसराय बाईपास पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस आरओबी की निर्माण एजेंसी को काली सूची में डाला गया है। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक पिस्टल, 25 कारतूस और 4 मोटरसाइकिल समेत एक चारपहिया वाहन जब्त किया गया है। अररिया जिले के रानीगंज, पलासी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापामारी अभियान के तहत आधा दर्जन गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मामले में 6 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों से वेतन और अन्य मद में दी गई राशि की वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 500 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं एक अन्य मैच में दिल्ली में शाम 7:30 से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इधर कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, देश का तीसरा निफ्टेन हाजीपुर में खुलेगा। अखबार लिखता है, 100 एकड़ जमीन सरकार ने दी, केंद्र से मिली मंजूरी। दैनिक जागरण लिखता है, आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के घर ईओयू का छापा, लाखों की नकदी और सोना चांदी भी बरामद। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, तय समय 2027 तक जमीन सर्वे पूरा करने के लिए सरकार की रणनीति, बंटवारा नहीं तो जिनके नाम जमीन है उन्हीं का नाम होगा सर्वे में। प्रभात खबर ने नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, एनटीए ने जिस बॉटनी टीचर को बनाया था एक्सपर्ट, उसी ने लीक किए प्रश्न। आज अखबार का शीर्षक है, बिहार के 4 स्मार्ट शहरों में यातायात पुलिस की बड़ी बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
9: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
8: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
9: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
8: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
10: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: अगर ये जगत बस खत्म होने को हो तो बचने के लिए कहां जाएंगे? हमारी खोज हमें ब्रह्मांड के बेहद दूरवर्ती और भयानक वातावरणों में ले जाएगी। तेज बिजलियां चमकेंगी, सुपरसोनिक तूफान आएंगे और हीरों से बने ग्रह दिखेंगे। सब

होती है। सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है ये। उन ग्रहों से इसके कई गुण मेल खाते हैं। दूर तक फैले बर्फीले इलाके, ऊंचे पर्वत, गहरे दर्रे, खोलते हुए ज्वालामुखी, ये नजारे दूसरे ग्रहों पर भी पाए जाते हैं। जब तक हम नीले समुद्र की गहराइयों की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि धरती पर क्या खास है।

0: सौर मंडल में हमारे पड़ोसी ग्रहों की तुलना में हमारी धरती ही ऐसी है जिस पर पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और पानी जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 400 करोड़ साल पहले पानी ने ही दूसरे तत्वों के साथ मिलकर अपने अंदर जीवन की शुरुआत को आरंभ किया था। इन नन्हे जैविक कणों से पहले साधारण जीवों का निर्माण हुआ था। ये हमारे बेहद नन्हे पूर्वज हैं। हमारी धरती पर सब कुछ, भले वो हवा हो या हमारा शरीर, एक ही तत्व से बने हैं, जो कि पहले पहल बने सितारों में से निकला था। जब इन तारों में विस्फोट हुआ तो इनके टुकड़े बिखर गए, जिनमें से कुछ ने हमारा सौर मंडल बनाया। धरती की आबोहवा दूसरे ग्रहों जितनी भीषण नहीं है, इसलिए यहाँ के मौसम में सितारों से निकले पदार्थ पौधों और जीव जंतुओं में बदल गए। पृथ्वी पर जीवन का होना ब्रह्मांड के लिए एक दुर्लभ और नायाब बात है। हर दिन के गुजरने के साथ हम ब्रह्मांड में थोड़े और गहरे उतर जाते हैं और हमारी धरती से बेहद दूर स्थित वातावरणों की खोज करते हैं। ऐसी कुछ जगहें हमने पृथ्वी पर कहीं देखी होंगी, लेकिन कुछ तो इतनी अजीबोगरीब हैं कि उनका होना तो असंभव ही लगता है। घूमता हुआ नीला सफेद गोला हमें ठोस लगता है और सौर मंडल में अपनी जगह पर स्थित भी, लेकिन इसका संतुलन बहुत नाजुक है और थोड़ी सी हलचल भी इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। पृथ्वी के विनाश के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ती हुई बस एक बड़ी एस्ट्रॉइड ही काफी है। इसे रोकना असंभव होगा। हमारे पास इस दुर्घटना को देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इतनी बड़ी चीज अगर हमारी तरफ आना शुरू होती है तो हमें सालों पहले ही पता चल जाएगा। भले हम उसके रास्ते से ना हट पाएं, लेकिन इतना तो संभव है ही कि कुछ मानव बचकर इस ग्रह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। अगर हम इस भिड़ंत को अंतरिक्ष से देख पाए तो ये बहुत ही भीषण होगी। पृथ्वी पर जीवन का पूरी तरह सर्वनाश हो जाएगा। यदि कोई बच भी गया तो अंतरिक्ष में कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढना होगा, ताकि हमारी प्रजाति को लुप्त होने से बचाया जा सके। उम्मीद है कि हमारे पड़ोस में कोई न कोई रहने लायक ग्रह तो होगा ही। अपनी खोज को हम पास ही से शुरू करते हैं, हमारे चंद्रमा से। सौर मंडल में ये दूसरी जगह है जहां मानव अपने कदम रख पाया है। नासा के वैज्ञानिकों को पता चला है कि चंद्रमा पर ऐसी जगह है जहां हमेशा अंधेरा ही रहता है और वहां का तापमान हमारे सौर मंडल के किसी भी और इलाके की तुलना में बेहद ठंडा रहता है। शून्य से करीब 234 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का तापमान प्लूटो से भी ज्यादा ठंडा है, जो कि सूर्य से कई 100 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी जिन जगहों पर रोशनी पड़ती है वहां चंद्रमा की सतह का तापमान कुछ 121 डिग्री तक गर्म रहता है। अगर हमें यहां जाना है तो हमें वही करना होगा जो कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने इस भीषण वातावरण से जूझने के लिए किया था। हम वहां तब पहुंचेंगे जब सूर्य की गर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ यहां नहीं पहुंची होगी। फिर भी चंद्रमा का बुध ग्रह से कोई मुकाबला नहीं है। ये ग्रह सूर्य के सबसे पास स्थित है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका अपना कोई वातावरण नहीं है। अगर नासा के किसी यान को बुध पर उतरना है तो ऐसा रात को ही संभव हो पाएगा। यान में हेडलाइट्स की जरूरत तो फिर पड़ेगी ही। बुध ग्रह पर जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां का तापमान 425 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ सिर्फ चला देने वाली गर्मी ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुध ग्रह पर कभी न थमने वाली सौर हवाएं चलती हैं, जिनसे यहाँ भयानक तूफान आते हैं। 800 किलोमीटर चौड़े चक्रवात 650 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं। धरती पर ऐसा तूफान सब कुछ उजाड़ कर खत्म कर सकता है। इस कारण से हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह ये तो बहुत ही भयानक जगह है, हमारे कोई काम का नहीं है। फिर भी बुध सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ये पदवी तो शुक्र ग्रह को प्राप्त है। अंग्रेजी में इसे वीनस कहते हैं, प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसका वातावरण एक मोटे कंबल की तरह पूरे ग्रह को अपने अंदर समेटे हुए है। इससे गर्मी इसके अंदर ही रहती है और ग्रह को ठंडा होने का मौका कभी नहीं मिलता। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से इस घटनाक्रम की वजह से इसका तापमान 482 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्र पर बारिश भी बहुत होती है, लेकिन रोजमर्रा की पानी वाली बारिश नहीं, यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है। इसके वातावरण का घनत्व इतना ज्यादा है कि आप अंतरिक्ष में से इसकी सतह को देख भी नहीं सकते, किंतु रेडार के इस्तेमाल से वैज्ञानिकों को ये पता चल पाया है कि सतह पर क्या हो रहा है। यहाँ निरंतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, इसलिए शुक्र ग्रह भी हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम अपने पड़ोस में एक और धरती जैसे ग्रह पर जाना चाहते हैं, तो हमें जाना होगा मंगल पर, जिसे अंग्रेजी में रोम के युद्ध देवता के नाम पर कहते हैं मार्स। यहाँ तापमान इतना हद से बाहर नहीं है, गर्मी में पारा करीब 35 डिग्री तक पहुँचता है, लेकिन फिर भी यहाँ दूसरी मुश्किलें तो हैं ही। सौर ऊर्जा की वजह से इसके वातावरण की पतली परत में कभी न थमने वाले धूल के तूफान उठते हैं, जो कि पूरे ग्रह को ढक लेते हैं। आगे हम अपने सौर मंडल की और गहराइयों में उतरेंगे, जहां बेहद बर्फीले वातावरण में भी शायद जीवन पनप ही सकता है।
1: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
7: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आएं कमलश्री कमलश्री कमलश्री बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: हमने देखा कि चांद पर घर बनाना आसान नहीं है और आस पड़ोस के ग्रहों का वातावरण भी इतना दुश्वार है कि मानव जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे वातावरण और भी भीषण होते चले जाएंगे। उदाहरण के लिए बृहस्पति को ही ले लीजिए। हमारे सौर मंडल का ये विशालकाय ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। यहाँ जहर से भरे अमोनिया क्रिस्टल से बने बादल हैं, जिन्हें तेज हवाएं जो कि शायद सौर मंडल में सबसे तेज हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। लेकिन बृहस्पति के पास कुछ ऐसा है जो कि दूसरे ग्रहों के पास नहीं है। इसके इर्द गिर्द 60 चंद्रमा हैं। लेकिन जितना खूबसूरत और रहस्यमय यूरोपा है उतना और कोई भी नहीं है। यूरोपा की घूमती हुई सतह बर्फ से ढकी हुई है और जैक्सन पोलॉक की पेंटिंग जैसी लगती है। सतह की दरारें और इसमें भिड़ंतों से हुए गड्ढे नासा यानों द्वारा ली गई तस्वीरों में साफ नजर आते हैं। यूरोपा की बाहरी सतह करीब 100 किलोमीटर गहरी है और ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सतह के नीचे एक विशाल नमकीय द्रव्य से भरा समुद्र लबलबा रहा है, लेकिन इसे अंतरिक्ष से देख पाना असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूरोपा की सतह के नीचे एक पूरा समुद्र हो? वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा की सतह पर पड़ी दरारें ज्वार भाटे से संबंधित हैं। बृहस्पति के इर्द गिर्द घूमते हुए ये चंद्रमा अपने आकार को बदलता रहता है। हर 3.5 दिन में यूरोपा बृहस्पति का एक अंडाकार चक्कर पूरा करता है। जब ये ग्रह के करीब होता है तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर लंबा कर देता है। फिर जब ये ग्रह से दूर जाता है तो वापस गोलाकार हो जाता है। इस निरंतर परिवर्तन की वजह से इस चंद्रमा के अंदर थोड़ी गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से सतह के अंदर लहरें उठती हैं, जिससे इसके बर्फीले कवच में दरारें पड़ जाती हैं। इतनी हलचल के बाद भी ये समुद्र होगा तो बेहद ठंडा ही, लेकिन निरंतर चलायमान रहने की वजह से यूरोपा के अंदर का द्रव्य जमता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे सौर मंडल की ये एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन के होने की बहुत संभावना है, मतलब पृथ्वी से बाहर यहाँ भी जीवन हो सकता है।

0: गुना बड़ा है। हालांकि धरती के चंद्रमा पर कुछ बेहद ठंडी जगह है, प्लूटो हमारे सौर मंडल का सबसे बर्फीला ग्रह है। ये सूर्य से 650 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका औसत तापमान 0 से 240 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। प्लूटो पर इस कदर कड़ाके की ठंड होती है कि सर्दियों में इसका नाइट्रोजन से बना वातावरण जमकर ठोस हो जाता है। फिर ये बाहर की ओर बढ़ता हुआ इसकी सतह से दूर इसे अपने अंदर समेट लेता है। जानना चाहते हैं तब यहाँ तापमान कितना होता है? ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान है एब्सोल्यूट जीरो और ये होता है 0 से 272 डिग्री नीचे। 0 से करीब 240 डिग्री नीचे का प्लूटो का तापमान एब्सोल्यूट जीरो के बहुत निकट है। इस तरह के तापमान पर तो रोजमर्रा की जिंदगी जीना असंभव है। मान लीजिए कि हम प्लूटो पर स्विमिंग पूल बनाते हैं और उसे पानी से भरते हैं। यहाँ के लो प्रेशर वैक्यूम की वजह से और 0 से 240 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान के चलते पहले तो पानी उबलेगा और फिर तुरंत ही जम जाएगा। मतलब हम सौर मंडल में कहीं और घर बनाने का विचार छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। मानव जीवन के लिए ये सभी परिस्थितियां भयावह हैं। फिर भी अगर हमारी प्रजाति को बचाना है तो हमें ब्रह्मांड में और गहरे उतरना होगा, जहां हमारा ऐसे वातावरणों से सामना होगा जो कि बेहद भीषण और कष्टदायी होंगे।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल 9939721308।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 8570-32042 पे।
0: जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह मानव जीवन के लिए बिल्कुल उचित नहीं हैं, और वहां हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें किसी और रहने योग्य स्थान की तलाश करनी ही होगी। लेकिन अगर आपको बुध और प्लूटो कष्टप्रद लगते हैं, तो जरा ब्रह्मांड के कुछ और स्थलों पर नजर तो डाल के देखिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे बादल की जो कि अंतरिक्ष में उड़ रहा है, और ना सिर्फ ये बेहद विशाल काय है
12: परंतु पृथ्वी से 4,000 करोड़

0: गुना भारी भी है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे पानी से भरे बादल की खोज की जो न केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे दूर भी। हमसे 1200 करोड़ लाइट ईयर दूर एक आकाशगंगा के भीतर ये बादल अपने अंदर क्वेजार कहे जाने वाले एक बेहद विशालकाय ब्लैक होल को समेटे हुए है। इस विशालकाय बादल में इतना पानी है कि हम इससे पृथ्वी के समुद्रों को 140 लाख करोड़ बार भर सकते हैं। और वैज्ञानिकों को सबसे दिलचस्प बात ये पता चली है कि यह बादल तभी बन गया था जब ब्रह्मांड की उम्र कुल 160 करोड़ साल थी। इसका मतलब है कि बिग बैंग के थोड़े समय बाद ही ब्रह्मांड में बहुत सा पानी मौजूद था। हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए बढ़ रहे हैं 3C303 नाम की आकाशगंगा की ओर और वहां जाकर पता चलेगा कि विशालकाय प्राचीन पानी से भरे बादल कोई खास बात नहीं है। एस्ट्रोनॉमरों ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर कई बार बिजली चमकती हुई देखी है लेकिन उन्हें अब हाल ही में पता चला है कि ब्रह्मांड के दूरवर्ती इलाकों में खतरनाक बिजली के करंट उठते हैं जो कि इतने बड़े हैं कि वैसे कहीं और नहीं देखे गए हैं। और ऐसे कारण से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि पृथ्वी पर चमकने वाली किसी भी बिजली से 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बिजली के करंट को बल प्रदान करता है एक चुंबकीय शक्ति वाला विशालकाय ब्लैक होल। लेकिन मान लीजिए इनके रास्ते में कुछ आ जाए, जैसे कि एक अकेला एक्सोप्लैनेट जो अपने काम से काम रख रहा हो, क्या ये अंतरिक्षीय बिजलियां उस ग्रह पर टूटकर उसका विध्वंस कर देंगी जैसा कि साइंस फिक्शन फिल्मों में होता है? शायद नहीं। वैज्ञानिक अभी भी इन पहले कभी न देखी गई बिजली की तरंगों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि बिजलियों के इस खेल को अभी हम दूर से ही देखें। ब्रह्मांड में एक नया घर खोजने की हमारी यात्रा पर हमारा सामना तरह तरह के खतरों से हो चुका है। जला देने वाली गर्मी, गला देने वाली ठंड और शक्तिशाली बिजली के करंट जिनकी लंबाई हमारी आकाशगंगा के बराबर है। लेकिन अब भी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनसे भी ज्यादा भयानक हैं। अगर आप एक ओलों की बारिश में फंस जाए जो कि आज तक की सबसे भीषण ओलावृष्टि हो, तो मतलब ऐसी जो बर्फ के गोलों को रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा गति से आपकी ओर फेंके। नासा एस्ट्रोनॉमरों ने तारों का एक हाल ही में पैदा हुआ सिस्टम खोजा है जो कि एक गैस और धूल के बादल से घिरा हुआ है। ये धरती से करीब 1000 लाइट ईयर दूर है। इसका नाम है IRAS-4B। ये एक डिस्क की तरह है जिसकी चौड़ाई कुछ 580 करोड़ किलोमीटर है। इस स्टार सिस्टम के केंद्र पर कुछ बहुत विस्मयकारी घटना हो रही है। हम यहाँ ग्रहों की एक व्यवस्था को जन्म लेते हुए देख सकते हैं। बादलों ने इन जन्म लेते हुए तारों और ग्रहों के इर्द गिर्द एक कंबल सा लपेट दिया है। जैसे जैसे बादलों से भरा पानी इसके केंद्र की तरफ खींचता है, इस समूह का गुरुत्वाकर्षण और ठंडा तापमान पानी को जमा कर उसे इतनी ऊर्जा देता है कि नवजात तारों पर ओलावृष्टि होने लगती है। लेकिन बर्फ की ये बारिश पास पहुंचते पहुंचते पिघलते हुए भाप बन जाती है और फिर ठंडी होकर बादलों के नीचे स्थित धूल की डिस्क और कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर ग्रहों का निर्माण करती है। अंततः भाप के साथ मिलकर जम जाती है और इससे एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतुओं का निर्माण होता है। इसी तरह एक नया सौर मंडल जन्म लेता है, लेकिन इसमें कई सौ करोड़ साल लग जाते हैं। मतलब हम पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने तक इंतजार तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पनपती हुई स्टार सिस्टम्स दुर्भाग्यशाली भी हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मांड कितना क्रूर हो सकता है।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
5: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
4: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
0: हमने अभी शायद एक सौर मंडल को जन्म लेते हुए देखा है। एक नवजात सितारे के इर्द गिर्द ग्रह अपना अस्तित्व बना रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि सब कुछ ठीक से हो और एक सौर मंडल तैयार हो जाए, इसमें कई सौ करोड़ साल लग सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक पृथ्वी जैसे ग्रह को यहाँ बन पाने का मौका मिलेगा या नहीं, जहाँ जीवन की शुरुआत हो सके। मान लेते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे विनाशकारी घटनाक्रम संभव है जो इस विकास की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। बहुत सारी आकाश गंगाओं की तरह हमारे मिल्की वे के भी बीचों बीच सैजिटेरियस ए नाम का एक विशालकाय ब्लैक होल है, जिसका मास सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है, और ये ग्रहों की रचना करने वाले बादलों, एस्टेरॉइड्स और नवजात तारा समूहों को अपने केंद्र की ओर खींच रहा है। एक बड़े बम्पर कार ट्रैक की तरह यहाँ भी सब कुछ एक दूसरे से भिड़ता रहता है। यहाँ सैजिटेरियस ए पर इन ग्रहों की भिड़ंत में कई रोचक अंजाम होते हैं। धूम केतु और एस्ट्रॉइड्स धूल में मिल जाते हैं और इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मलबे का एक ढेर सा इकट्ठा होता चला जाता है। लेकिन अपने लिए एक नए घर की खोज में हमें सिर्फ इन भिड़ंतों से ही सावधान रहना है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में और भी बहुत से अनदेखे खतरे हैं। मिल्की वे के चारों ओर ना देखे जा सकने वाले कई ब्लैक होल मौजूद हैं। ये कभी कभी एक दूसरे के साथ बेहद विनाशकारी ढंग से टकराते हैं और इससे पैदा हुई असीमित ऊर्जा इन्हें अंतरिक्ष में दूर तक अनजान रास्तों पर भटका देती है। आखिर इन आवारा से ब्लैक होल्स की गति क्या है? 48 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। एस्ट्रोनॉमरों का मानना है कि इस तरह के सैकड़ों आवारा ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा में घूम रहे हैं। क्या जीवन देने वाले ग्रहों के लिए ये भी एक बड़ा खतरा है? मतलब धरती जैसे ग्रहों के लिए। इन ब्लैक होल्स की हमारे सौर मंडल या किसी और सौर मंडल में प्रवेश करने की संभावना बेहद कम है। लेकिन एक नहीं के बराबर संभावना ये भी है कि ऐसा भटकता हुआ ब्लैक होल ओट क्लाउड से टकरा जाए जहां कई सौ करोड़ धूमकेतु अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तब इन धूमकेतुओं को धकेल कर तेज गति से हमारे सौर मंडल में भेज सकता है या फिर उस रास्ते में किन्हीं दूसरे ग्रहों तक।

0: हमारे मिल्की वे के बाहरी इलाकों में एक और खतरनाक वस्तु विशेष भी मौजूद है। इन्हें कहते हैं ब्लू स्ट्रैगलर्स या वैम्पायर स्टार्स या फिर कैनिबल स्टार्स। ब्रह्मांड के दूसरे सितारों की तुलना में इनकी उम्र कम है। ये ज्यादा गर्म है और गहरे नीले भी। इन्हें स्ट्रैगलर इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो ये ज्यादा आयु वाले सितारों से टकराकर उनकी हाइड्रोजन चुरा लेते हैं, या फिर बाइनरी सितारों के साथ भयंकर मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ब्लू स्ट्रैगलर्स अब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य ही है और इनके नजदीकी संबंधी वैम्पायर सितारे तो ब्रह्मांड में प्रेत आत्माओं जैसा काम करते हैं।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

अगर हमें एक ऐसा ग्रह ढूंढना है जिस पर मानव जीवन संभव हो सके, तो हमें अपनी खोज बहुत ध्यान पूर्वक करनी होगी, क्योंकि यहाँ खतरे बेहद बड़े हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर हैं, लेकिन फिर भी ये असामान्य नहीं है। इन विचित्र स्थानों पर पाए जाने वाले पदार्थ और इनमें होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं ब्रह्मांड के नियमों के अंतर्गत ही हैं। पृथ्वी की तरह यहाँ जो पदार्थ पाए जाते हैं, वो अनुकूल परिस्थितियों में जीवन का सर्जन कर सकते हैं, या फिर किसी और बिल्कुल नवीन वस्तु का भी। पृथ्वी से सिर्फ 40 लाइट ईयर दूर कैंसर नाम के नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन में एस्ट्रोनॉमरों को रोशनी की चकाचौंध दिखाई दी। यहां उन्हें मिला 55 कैंक्री ई, एक ऐसा ग्रह जिसकी चौड़ाई पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा है और वजन 8 गुना ज्यादा। मतलब ये एक महापृथ्वी है, लेकिन सिर्फ अपने माप की वजह से ये ग्रह महान नहीं है। ये चट्टानों भरा ग्रह हीरों से बना हुआ है। इस ग्रह का घनत्व बहुत ज्यादा है और ये बेहद गर्म भी है। ये बुध ग्रह की तुलना में अपने सूर्य के 25 गुना ज्यादा पास है। 55 कैंक्री ई पर तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और हमारे सौर मंडल में कार्बन की तो भरमार है, इसलिए हीरों का बनना हैरानी की बात नहीं है। पृथ्वी हर 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन ये हीरों का ग्रह हर 18 घंटों में एक बार अपने सितारे के इर्द गिर्द घूमकर लौट आता है। 18 घंटे, सोच सकते हैं आप इसकी गति कितनी होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर इतने बड़े साफ और चमकदार हीरे हैं जो पृथ्वी पर हमें कभी नहीं मिल सकते। इतने बड़े हीरे जिनके सामने होप डायमंड बस एक रेत के कण जितना बड़ा ही रह जाएगा। तो इस ग्रह से हीरे हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका वातावरण हमारे लिए पहली बड़ी चुनौती होगा। इसकी सतह बेहद गर्म है, उस अंधेरी तरफ की भी जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, और ये कहना भी बेहद मुश्किल है कि हीरों तक पहुंचने के लिए हमें कितनी गहराई तक खोदना पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह पतली ही है। चलिए मान लीजिए इन चुनौतियों और खतरों से ना घबराते हुए हम हीरों की खान इस ग्रह पर उतर ही गए, तो हमें खुद को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा, क्योंकि तेज गर्मी हर धातु को पिघला देगी। और हम उम्मीद करेंगे कि इसकी सतह ज्वालामुखी के लावा की तरह खौल नहीं रही हो। पर चलिए मान लीजिए कि हमने किसी तरह कुछ खास औजारों की मदद से हीरों की इस खान की सतह को तोड़कर खुदाई शुरू कर ही दी। हमें यहाँ मिलेगी हीरों की एक गहरी परत, जो वहां तक होगी जहां तक हमारी नजर जाएगी। कई चट्टानें होंगी यहाँ जिनमें मौजूद हीरे आज तक देखे गए हीरों में से सबसे बड़े होंगे। लेकिन फिर हम इन सारे हीरों को पृथ्वी पर लेकर कैसे आएंगे? हमें एक ऐसे ग्रह से ऊपर की ओर उड़ना है जो पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा भारी है। मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से लड़कर ऊपर उठने के लिए हमें बेहद तेज रफ्तार की जरूरत होगी।

हकीकत ये है कि 55 कैंक्री ई को हम दूर से ही देखें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और चमत्कारी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। अगर हीरों का ग्रह संभव है तो फिर स्वर्ण का क्यों नहीं। या फिर एक यूरेनियम का प्लैनेट।

हाल ही में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर के एस्ट्रोनॉमरों ने एक विचित्र एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो फियोकस नाम के कॉन्स्टेलेशन में एक रेड ड्वार्फ के चक्कर लगा रहा है। उनका विश्वास है कि ये पहला पानी से बना ग्रह है। ये पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर है और ये और ग्रहों की एक नई किस्म है। ये पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और 7 गुना ज्यादा भारी भी। हबल टेलीस्कोप की मदद से नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ऐसा और कोई ग्रह कभी नहीं देखा गया है जिसका अधिकतर भाग पानी से निर्मित हो। अभी के लिए इस ग्रह को नाम दिया गया है GJ 1214b। यह अपने सूर्य से करीब 16 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और इस रेड ड्वार्फ का एक चक्कर काटने में इसे 38 घंटे लगते हैं। अपने सूर्य के बेहद पास है इसलिए ये जल से भरा ग्रह बेहद गर्म भी होगा। सतह पर तापमान करीब 232 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका वातावरण अधिकतर भाप से भरा है और सतह पर गर्म बर्फ या फिर खौलता पानी है। मतलब ये गोला है जिसके बाहर गाढ़ा खौलता पानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पानी से भरा ग्रह अपने सूर्य के निरंतर नजदीक होता चला जा रहा है और एक समय पर इसका तापमान जीवन के लिए उपयुक्त था। उस समय ये पृथ्वी के जैसा ही था, बस यहाँ महाद्वीप नहीं थे, सिर्फ पानी ही पानी था। इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है क्योंकि पृथ्वी की सतह भी तो 70% पानी से ही निर्मित है। ऐसी पानी की दुनिया में रहना हो तो क्या करना होगा? मतलब जिसका तापमान और मौसम पृथ्वी के जैसा ही हो, इसकी कल्पना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है।

0: लेकिन GJ-12-14B अपने सूर्य के बेहद निकट है, इसलिए हमारे रहने के लिए ठीक नहीं है। परंतु ऐसे पानी के ग्रह की खोज से ये तो साबित हो गया है कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं। बस हमें एक ऐसा ग्रह ढूंढना है जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल हो।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
3: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
2: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
3: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
2: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
2: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।

ब्रह्मांड में एक और घर खोजने की हमारी यात्रा में हमने अपने सौर मंडल में कई ऐसे नए स्थल देखे हैं जिनका वातावरण भयावह है और जहां जीवन का पनपना असंभव है। लेकिन नासा के एस्ट्रोनॉमरों द्वारा हाल ही की हुई खोज मानवता के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इन एस्ट्रोनॉमरों ने एक पृथ्वी के आकार का ग्रह खोजा है जो कि हमारे सौर मंडल के बाहर अल्फा सेंटोरी बी के इर्द गिर्द कक्षा में है और हमसे बस 4.3 लाइट ईयर ही दूर है। ये ग्रह है अल्फा सेंटोरी बी बी और ये हमारा निकटतम एक्सोप्लैनेट है। सूर्य के जितना करीब बुध है उससे 10 गुना ज्यादा ये अपने सितारे के पास है, इसलिए ये एक्सोप्लैनेट भी बेहद गर्म होगा। लेकिन इसकी खोज से ये तो साबित होता ही है कि अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम में दूसरे ग्रह भी शामिल हैं। ऐसे ग्रह जिनकी खोज अब तक हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये अपने सूर्य से उचित दूरी पर हों ताकि यहाँ पानी उपलब्ध हो। हाल ही में एस्ट्रोनॉमरों ने एक और एक्सोप्लैनेट भी खोजा है, लेकिन ये थोड़ी दूरी पर है, पृथ्वी से 22 लाइट ईयर दूर। इस ग्रह का नाम है ग्लीजर 667 सीसी। इस ग्रह का भार पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा है। ये भी एक महापृथ्वी है और ये अपने सूर्य के इर्द गिर्द 28 दिनों में ही एक चक्कर काट लेता है।

ब्लेजर 667cc जीवन के थोड़ा बहुत अनुकूल है और वैज्ञानिकों को लगता है कि इस ग्रह पर बस सूर्य की गर्मी से 10% कम मात्रा में ही रेडिएशन की गर्मी रहती है। अगर वैज्ञानिकों की बात सही है तो फिर इस ग्रह पर पानी होने की भी संभावना है, और अगर इस पर धरती के जैसी बादलों वाली आबोहवा है तो फिर इसका तापमान हमारी जरूरत अनुसार करीब 30 डिग्री सेल्सियस होगा।

ये ग्रह एक तिहरे सौर मंडल में है जहां सितारे भी एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, इसलिए क्षितिज पर सूर्य डूबने का नजारा तो लाजवाब होगा। फिर भी इसमें कुछ बड़ी कमियां तो हैं ही। ये सौर मंडल बहुत पुराना नहीं है, यही कुछ 200 करोड़ साल पुराना। कंप्यूटर की गणना से लगता है कि अभी इन तारों की कक्षाएं स्थिर नहीं हैं। ये बात तो ग्लीजर 667 सीसी की परिस्थिति को गड़बड़ा सकती है। इस ग्रह की अपनी कक्षा ही इसे सौर मंडल से बाहर ले जा सकती है। फिर ये उन अनगिनत एक्सोप्लैनेट्स में से एक होगा जो बिना अपने सूर्य और उसकी गर्मी के घेरे से दूर आकाश गंगा में भटकता फिरेगा। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक और एक्सोप्लैनेट हाल ही में खोजा गया है और ये है सीटस कॉन्स्टेलेशन में स्थित। यहाँ भी जीवन की कुछ संभावनाएं तो हैं ही। ग्लीजर 667 सीसी की तुलना में इस तक जाने के लिए हमें बस आधा ही रास्ता तय करना होगा। इसका नाम है टाउ सीटीई। ये महापृथ्वी अपने सूर्य तुल्य सितारे का एक चक्कर 168 दिनों में लगाती है। और कई एक्सोप्लैनेट्स की तरह टाउ सीटीई की भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही हैं। यहाँ भी जीवन का बच पाना मुश्किल ही है। सबसे पहले सतह पर के तापमान के अनुमान से लगता है कि ग्रह करीब 65 डिग्री सेल्सियस पर डेथ वैली से भी ज्यादा गर्म है। इसके ऊपर बादलों की परत भी बेहद मोटी है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हरकत में आता होगा। मानव जीवन के लिए ये ग्रह जरूरत से ज्यादा गर्म है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अगर टाउ सीटीई अपनी धुरी पर उतना ही झुका हुआ है जितना कि बुध ग्रह, तो फिर इस ग्रह पर ऐसे कुछ इलाके होंगे जिन पर कम रोशनी और गर्मी पहुंचती होगी। ये इलाके ठंडे होंगे। हो सकता है कि यहाँ भरपूर मात्रा में पानी भी हो और पृथ्वी जैसा स्वस्थ और संतुलित वातावरण भी। लेकिन अभी सामान मत बांधिए। टाउ सीटीई पर अगर रहना है तो एक और बड़ी चुनौती है। ये ग्रह एक ऐसे सौर मंडल में स्थित है जिसके चारों ओर एक विशालकाय एस्ट्रॉइड का जमावड़ा है। अगर इतना मलबा सिर के ऊपर चढ़कर बैठा हो तो टाउ सीटीई रहने के लिए एक बेहद आकस्मिक और खतरनाक जगह सिद्ध हो सकती है। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसे बहुत से ग्रह और भी हो सकते हैं जहां शायद जीवन संभव हो। सन 2009 के अपने लॉन्च के बाद से केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिल्की वे में कई एक्सोप्लैनेट्स खोजने में सफल रही है। इनकी तादाद हजारों में है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही करीब 1700 करोड़ एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं।

बीतते सप्ताह के साथ और खोजें होती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे हमें नए ग्रहों के वातावरण और आबोहवा के बारे में पता चलता जा रहा है, लगता है कि अब हमें एक पृथ्वी नुमा दूसरा ग्रह मिलने में कोई देर नहीं है जिस पर जीवन संभव हो। सिर्फ संभव ही नहीं, बल्कि जिस पर जीवन पनप सके। एक ऐसा ग्रह जहां पानी जमकर चमत्कारिक बर्फ के ढेर तैयार करे जो इतने ऊंचे हों कि बादलों को छुएं, या फिर ऐसा जहां बहुत अधिक मात्रा में पानी हो ताकि पौधे इसमें पनप कर वहां तक फैल जाएं जहां तक हमारी आंखें देख सकें।

फिर शायद प्रकृति एक दूसरे ग्रह पर एक बिल्कुल नया, कभी ना देखा गया पर बेहद खूबसूरत फूल उगा सकेगी, या ऐसे पेड़ जो आज तक बस साइंस फिक्शन की कल्पना में ही हैं।

0: अगर हम रोशनी की रफ्तार पर जाने की चुनौती को जीत पाएं, तो ऐसा एक नया ग्रह हमारा अपना घर बन सकता है। हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ हैं और वो अंतरिक्ष की अथाह गहराई में बिखरे हुए हैं। इसलिए ये सोच पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ब्रह्मांड के अनगिनत अरबों खरबों सितारों में कम से कम एक और सूर्य तो होगा ही, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी जैसा एक एक्सोप्लैनेट घूम रहा होगा और जिस पर जीवन संभव होगा। सच तो ये है कि ऐसे शायद कई सौ करोड़ एक्सोप्लैनेट हैं, जिनका वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है और जिनकी खोज होना अभी बाकी है। इनकी तादाद खरबों में हो सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमें इस उत्तर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये संभव है कि हमारे जीवन काल में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मिल जाए। खोज मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगी।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434003।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87 894 18744।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: रामू हरिया, कल तैयार रही लो परारी जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक

0: तीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: मेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आँखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
4: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
2: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन मटन दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा बर्गर चाट गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
0: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
2: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस यादवपुर रोड गोपालगंज,
0: जहां हर निवाला कहे वाह।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

0: चाहते हो मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
4: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
3: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
4: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
3: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज,
4: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
2: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
2: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
2: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी देके।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझिम सुनो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
8: भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा कैमरे से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाप पर ताली, भौजी

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
6: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
6: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-3500।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी
2: इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता:
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: करें
1: 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
0: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
0: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166064498 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89673।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042-34-03, 62042-34-03।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
15: पर्दा नशी तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां में हंसी, पर्दा नशी तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
2: ठीक बा भैया।
3: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
1: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
3: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
1: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
3: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
1: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी देके।
3: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।
1: Climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में संयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
6: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

0: केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत

ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: हे रास्कल, यू नॉटी बॉय।
7: यस मी।
6: I love you.
7: I know, girl.
6: Rascal.
7: Uh-huh.
6: Show me a big, big muscle.
7: Woo! You get naughty now.

0: 40 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894-18744।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: भाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
6: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
6: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
6: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइन

0: खुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी।

0: एजेंसी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 800-222-1969 या 9-11-7-0-1-8-3-5-0।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लुवाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम।
13: सुनो दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड।

0: रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22567 या 97-714-86-164।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

प्राणी यह सांसारिक जीवन में उलझ करके काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पड़ के असली धन के गंवा देता और अंतिम समय में पछतावता। कैसे बड़ा ही सुंदर कल्पना बा कि सब धन सियारा खाइले

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
6: ठीक बा भैया।
7: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
7: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
7: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
7: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
12: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91, 8029-94-91 पर। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिंझिन के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
6: हेलो।
13: हेलो, नमस्ते मैम।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
13: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, प्रयागराज से मैम।
6: जी, कैसे हैं मनोज जी?
13: ठीक है मैम
6: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है मनोज जी?
13: मैंने अभी तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है
6: जी। और से बताइए, घर परिवार आपका कैसा है?
13: परिवार तो सही है, जो है पापा हैं, पापा है दुकान रखे हैं और बाकी घर परिवार तो अभी सही है। आगे हम जो है कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं बीएच के लिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब बीएच के लिए सोच रहे हैं।
6: बिल्कुल बढ़िया है, करिए। और अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: पापा का नाम है अनिल सिंह एंड मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी
6: जी। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
13: यस मैम
6: जी।

0: तो मनोज जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कॉफी का, बी तिलहन का और सी गेहूं का। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम गेहूं।
0: प्योर है
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए मनोज जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गेहूं को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा तिलहन। सही उत्तर होगा तिलहन। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: रवि कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं रवि जी?
2: ठीक हूँ मैम।
0: जी तो क्या हो रहा था अभी?
2: बैठे थे।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है रवि जी आपसे? आपकी
2: 12वीं पास है।
0: उसके बाद पढ़ाई जारी है कि बंद हो गया है?
2: जारी है मैम, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन।
0: अभी लिए नहीं है?
2: नहीं।
0: ओके तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: जी
0: जी, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपना।
2: मम्मी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम दिनेश।
0: जी तो ले पहला प्रश्न।
2: जी
0: जी,

0: विजय, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी।
0: कौन सा ऑप्शन?
1: ऑप्शन सी तेलुगु।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971 और ऑप्शन सी 1991। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है?
1: जी।
0: लॉक कर दो।
1: जी जी
0: जी। तो चलिए रवि जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1971 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो तीसरा प्रश्न आपसे ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, बी 86वां और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 86 संशोधन को लॉक करते हैं। और बताएं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज आपका चौथा प्रश्न ये है, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए
1: 32।
0: चोर है?
1: जी।
0: ओके। तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिजली का बल्ब सर्वप्रथम कब बना था? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम कब बना था? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1879 और ऑप्शन सी 1785। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिएगा मैम।
0: ऑप्शन ए 1821, बी 1879 और सी 1785।
1: 1879 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, लॉक के साथ।
0: ओके। तो चलिए रवि जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी 1879 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, टेलीफोन का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1874, बी 1875 और सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।
1: चोर
0: है
1: जी,
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1876 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 3800 संशोधन, बी 4200 संशोधन और सी 4400 संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है?
1: जी।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 4200 संशोधन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 4400 संशोधन।
1: ओके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुपीज फाउंडेशन कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
10: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
9: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
10: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
9: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
10: जहां हर निवाला कहे वाह।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
12: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
14: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
15: हेलो,
0: स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
15: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
15: नाम अनुराधा गुप्ता है, थाने से बोल रहे हैं।
0: नाम एक बार और बताइए।
15: अनुराधा गुप्ता।
0: अनुराधा गुप्ता
15: जी।
0: जी कैसी हैं अनुराधा जी?
15: ठीक है, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था अभी?
15: कुछ नहीं, खाना बना रहे थे दोपहर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
15: जी मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन में अब गई हूँ।
0: अच्छा, तो आपका एम क्या है, कुछ सोचा है आपने?
15: टीचर का है, बस देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी?
15: जी
0: जी। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
15: जी
0: जी, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
15: जी, पापा का नाम प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम धर्मशीला देवी है।
0: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।

0: सोनराजा जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिनलैंड, ऑप्शन सी
0: फिनलैंड।
1: जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है
0: तो लॉक करो।
1: जी
0: जी तो चलिए अनुराधा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी फिनलैंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न ये है
1: जी,
0: भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1921 और सी 1931। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1921। जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है।
0: ओके चलिए तो दादा जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1921 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी गलत है। सही उत्तर होगा 1911।
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलाम जी?
2: बढ़िया है, आपने सुनाई, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुलाम जी आपकी?
2: क्या मैम?
0: पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप?
2: मैट्रिक तक किए हैं मैम।
0: मैट्रिक तक किए हैं?
2: जी जी।
0: तो अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए आप।
2: मेरा अबू का नाम है अब्दुल वाहिद अंसारी, मम्मी का नाम है बीबी उम्मत।
0: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी जी
0: जी,

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त और ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम बी होगा,
0: श्रीगुप्त।
1: जी
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है लेकिन लगता है।
0: ओके तो लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी श्रीगुप्त को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा और ऑप्शन सी विज्ञान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विज्ञान होगा मैम।
0: विज्ञान होगा
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है लेकिन देखते हैं कोशिश है।
0: ठीक है तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जल संरक्षण। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
10: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल

0: हेलो।
1: हाँ सर, वेलकम मैम।
0: वेलकम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से? जी, कैसे हैं जोहार जी?
1: मैम
0: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, दसवीं क्लास में है।
0: किस क्लास में है?
1: 10 क्लास में, 10th में।
0: अभी 10th में पढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है?
1: अच्छी चल रही है मैम।
0: जी, तो कुछ सोचा है आगे क्या करना है पढ़ाई कंप्लीट करके?
1: नहीं मैम, अभी नहीं सोचते हैं।
0: अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
1: अम्मी का नाम कैसा खातून और अबू का नाम मेरा जानकारी।
0: लिया गया आपसे आज का पहला प्रश्न।
1: यस मैम।
0: ओके,

0: निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी जुजुबा मोम और ऑप्शन सी मधुमोम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी जुजुबा मोम।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं मैं श्योर नहीं हूँ।
0: मैं तो लॉक करूँ?
1: यस।
0: ओके तो चलिए झार जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी जुजुबा मोम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पैराफिन मोम।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया। हेलो।
2: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सलोनी कुमारी बंजारी ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
0: जी कैसी हैं सलोनी जी?
2: ठीक हूँ
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही थी।
0: जी किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: बीए।
0: बीए चल रहा है? कौन सा ईयर?
2: फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है?
2: हाँ।
0: तो कैसी चल रही है तैयारी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: ओके।

0: नाम बता दीजिए मम्मी पापा का अपना।
1: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल का।
0: ओके, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है सलोनी जी, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका
1: क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु।
1: तमिल।
0: श्योर है?
1: नहीं, श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉन्टेस्ट में कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: अब सफेद

0: दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
1: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
0: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल। क्लास 10th तक सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
1: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
0: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा।
1: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
5: हेलो,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
5: जी, मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ।
4: जी, कैसी हैं बिमल जी?
5: मैं ठीक हूँ मैम। अभी फोन तो चार बार की रिंग हो गए, कट कट गया।
4: जी, मैं कॉल रिसीव कर रही थी और कॉल कट जा रही थी।
5: अच्छा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है।
4: जी जी, हो सकता है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है जी बिमल जी आपकी?
5: ग्रेजुएशन है।
4: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
5: अभी तो छूट गया है मैम।
4: अच्छा अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
5: मम्मी का नाम प्रभावती देवी है, पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
4: जी, तो लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।
5: जी मैम।
4: तो चलिए, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है बिमल,

0: टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन लगी वेयर्ड, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय स्रोत है अब।
1: ऑप्शन ए जॉन लोगी।
0: जॉन लोगी वेयर्ड
1: जी। वेयर्ड
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, देखते हैं।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जॉन लोगी वेयर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय स्रोत है अब।
1: दिल्ली।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ब्राजीलिया।
1: ब्राजीलिया।
0: हाँ। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताइए अपना।
2: राजन कुमार बोल रहा हूँ थामे से।
0: राजन
2: जी।
0: जी क्या हाल चाल है राजन जी?
2: ठीक है
0: जी। तो क्या करते हैं आप?
2: अभी हम ग्रेजुएशन पास करके बीएड कर रहे हैं।
0: जी जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कल ही आया है।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी पूछिए।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी मेरे मम्मी पापा का नाम है श्री रामा जी प्रसाद, मम्मी का नाम है प्रभावती देवी।
0: जी। तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन ए माइकल फराडे, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी जेम्स वाट। आपका समय शुरू है।
1: ऑप्शन बी होगा, थॉमस एडिसन।
0: सही श्योर है आप?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए राजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? ऑप्शन ए मंगलयान 2, ऑप्शन बी नेपच्यून मिशन और ऑप्शन सी शुक्रयान 1। आपका समय शुरू है। आप
1: मंगलयान को लॉक करिए।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है, लेकिन अभी न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 50-50 है।
0: अच्छा तो लॉक करूं?
1: जी मैम लॉक कीजिए।
0: चलिए तो राजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मंगलयान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा शुक्रयान 1।
1: ओके।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
9: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
8: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921। 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: नमस्ते,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: मैं सोनू दुबे पार्टी से बात कर रहा हूँ।
0: ठीक, कैसे हैं सोनू जी?
11: बढ़िया, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
11: उसमें ड्यूटी हो रहा था।
0: चलिए जी, आपसे आज का पहला प्रश्न।
11: जी जी
0: जी,

0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सोनू जी।
1: मम्मी का नाम कलिंदर देवी और पिता जी का नाम सोनू जी।
0: ओके, तो सोनू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेलुगु को फिक्स करें।
0: प्योर है?
1: प्योर नहीं हूँ, कंफ्यूज है तमिल और तेलुगु में
0: जी।
1: ऑप्शन सी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? ऑप्शन ए तेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक और ऑप्शन सी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन ए
1: जी।
0: प्योर है?
1: जी प्योर हूँ।
0: ओके, तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए तेथिस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 86वां संशोधन और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छियासीवा
0: है
1: जी, मौलिक शिक्षा का नाम है
0: जी। हाँ, शिक्षा का अधिकार मौलिक।
1: हाँ, छियासीवा
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 86वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: चौथा प्रश्न आपसे ये है, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 226 और सी है अनुच्छेद 368।
1: 368 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज़ कॉल से।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज़ कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज़ कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिंजुम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99393965930।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहां कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947434468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की, जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरु नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1,000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा

0: आज यहां न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गईं। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।

0: My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning.
1: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी। लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया। दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी, बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस नए रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था।
2: Underscore to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue.
1: Aman, chain aur dosti ki ummeed se bhare is mahol mein 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
3: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए
4: रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097-06-575।
1: कहानी करगिल की, अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
15: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में हैं और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी, जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
1: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
10: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा के नहीं ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
16: जब तक भारत को पता चल पाता तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी।
17: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहां तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
18: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ। मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
17: परवेज मुशर्रफ जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था।
19: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहाँ हम चले गए, ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया और मैं रिपीट कर रहा हूं उनको गले से पकड़ लिया क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है जो श्रीनगर से द्रास कारगिल और लद्दाख ले जाती है उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
17: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
20: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे, तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
17: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
21: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
23: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
23: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
23: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
24: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
25: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
26: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
27: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
28: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
27: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
29: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
30: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
29: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
31: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
32: कहानी करगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट कर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक, करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे।
33: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, हेड ऑफ कश्मीर, जिहाद, ये वो सारा कुछ, ISI में जब वो थे तो अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए। जनरल महमूद, कोर कमांडर 10 कोर, और हमारा फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका ब्रिगेडियर जावेद हसन, इंचार्ज ऑफ नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स कमांड, नॉर्दर्न इन्फेंट्री, जो कि इन इलाकों के, ये थे द 4 पीपल हु कंसीव्ड द गैंग ऑफ 4 अक्टूबर नवंबर 98। अभी बस डिप्लोमेसी शुरू भी नहीं हुई थी तो इन्होंने फैसला किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया इस सेक्टर के अंदर कुछ अग्रेसिव शेलिंग हो रही है, इंडिया के कुछ प्लान्स बन रहे हैं, कोई और ना कुछ सीज कर ले LOC के ऊपर। तो इन्होंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदर और बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए तो बंदर और बंदे की जात, सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसी वॉक इन, पता नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
32: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांघकर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद LOC क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
1: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी NLI के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बडाली सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16,000 से 18,000 फीट तक की हैं और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
32: जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
4: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
32: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
5: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
32: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
6: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलटवार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था LC ना पार करने का, ये बहुत समझदार फैसला था, क्योंकि इससे कोई विदेशी ताकत इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते तो ये इंटरनेशनल स्थिति बन जाती, UN उसमें बीच में टपक पड़ता, अमेरिका दबाव डालता कि लड़ाई बंद करो, मैक्सिमम हम 7-8-10 दिन 15 दिन तक लड़ाई लड़ सकते थे, जबकि ऐसे पहाड़ों पे हमारा अंदाजा था कि 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे उनके पांव काटने में। तो इसलिए अगर हमने लाइन पार की होती, हमें दबाव पड़ता, 15 दिन में हमको खत्म करना पड़ता और काफी सारा इलाका उसके हाथ में रह जाता ऐसे अहम जगह में।
5: शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है, लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है।
1: युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को हमला करने वालों का नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को भेजना पड़ा था।
32: भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपने सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स गनों ने करगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन पर बोफोर्स के गोले तो आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाना शुरू किया।
6: लड़ाई के मैदान में इसने अपना पूरा जौहर दिखाया और जैसे मैंने बताया कि इस ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अगर हम दुश्मन को हिला पाए तो सबसे ज्यादा उसमें भूमिका थी हमारी बोफोर तोपों की और हमारे इन्फेंट्री के सिपाहियों की हिमाकत और शुजात की। और ये बोफोर तोपें हमने बताया हर इन्फेंट्री पलटन के अटैक के लिए हमने 100 गन्स वहां पे पहुंचवाई थी और जो ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर्स थे वो वहां पहुंचाए ताकि दुश्मन को हिला लिया जाए हमले के पहले और तभी दुश्मन के पांव उखड़े, नहीं तो उस हाइट से उसको निकालना असंभव था।
1: करगिल की कहानी बिना बोफोर्स के पूरी नहीं होती। 155 मिलीमीटर की होविट्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया।
32: ₹26 मई 1999 को भारतीय वायु सेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायु सेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को MiG-27 तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया, जबकि मिसाइल के निशाने पर आए विमान MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने बर्बरता से मार डाला।

0: India will share my sadness that on first report and preliminary inspection of the body, we find bullet wounds. Now the body is being taken for post-mortem, and when we have the full report of the post-mortem, we shall present it to you.
1: शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और Mirage-2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ।
2: Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया।
1: इसके साथ भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए।
3: Direct involvement of the Pakistani army in these intrusions have been proved beyond doubt.
1: भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ।
4: कोई नाइट 12-13 को टू राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह 13 तारीख को उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था और टोलोलिंग एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था दुश्मन।
1: टोलोलिंग के बाद भारतीय सेना का मकसद था टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ना। टाइगर हिल को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने को निकले भारतीय सैनिक अपने साथ रसद की जगह ज्यादा से ज्यादा हथियार

0: ईद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
9: कहानी करगिल की, पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चे पर जंग छेड़ दी थी। राजनयिक एक तरफ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ रोज दिल्ली में वायुसेना, थल सेना और विदेश विभाग के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे। टेलीविजन

0: कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। यह पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
4: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
7: और 90-97-61-60-02।
0: कहानी करगिल की। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत ने वो किया जो अब तक कभी नहीं हुआ था। 11 जून 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई गई।
10: उनसे बात तो नहीं हुई कोई, कल मुलाकात वगैरह हुई कोई?
11: कल सर हुई शाम को,
10: तो वो ब्रीफिंग हमने की जो मियां साहब के साथ वही फोरम था, जो फुल फोरम था पहले, जहां हमने ब्रीफिंग की थी।
11: और उधरी हुई जमशेद के पास?
10: नहीं, मियां साहब के दफ्तर में।
11: अच्छा अच्छा, जो उधर
0: टेप में आवाज पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की थी। मुशर्रफ चीन में थे और अजीज इस्लामाबाद में। कल करगिल में पाकिस्तान की सेना का दम बहुत जल्दी फूलने लगा था। हालात बिगड़ते देख नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। नवाज शरीफ हवाई हमलों को रुकवाना चाहते थे।
12: कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे श्रीनगर में टेलीफोन किया था, बातचीत की थी और वो यही कहते रहे कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान इस मामले को ठंडा करना चाहता है। हमने कहा ये बताइए ये मामला शुरू कैसे हुआ। हम तो दोस्ती का पैगाम लेकर लाहौर गए थे और लाहौर की सड़क कारगिल में चली जाएगी ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कारगिल में आपने हमला कर दिया। कल भी उन्होंने जब हम गए हमारा दल गया तो उन्होंने तोपों से सलामी दी, एक के बाद एक गोले दागे। किस लिए? गोलों से हमारा देश दबने वाला नहीं है, हमारे जवान गोलों से झुकने वाले नहीं।
0: भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका के पास पहुंच गया, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि पहले पाकिस्तान करगिल से निकले और लाहौर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को परास्त कर चुका भारत कूटनीति के मैदान में भी भारी पड़ रहा था।
13: वर्ल्ड ओपिनियन जो था दुनिया की तरफ से ये बात साफ थी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से खुराफात हुई है और भारत जो भी कर रहा है, भारत ना सिर्फ भारत ने बहुत संयम बरता कि उस लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दिया, बट सिर्फ अपने इलाके को खाली कराने के लिए युद्ध किया जिसके लिए हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो उस हालात में दुनिया को भारत की छवि जो थी एक बहुत संयम वाले देश की, एक सोच समझ के कार्रवाई करने वाले देश की और ऐसा देश के जो अपने हितों की रक्षा के लिए, जो उसके जायज हक है सिर्फ उन्हीं के लिए कार्रवाई करेगा, ना कि दूसरे देश की किसी इलाके ऊपर नजर रखेगा।
14: ऑपरेशन विजय इज गोइंग टू बी ए ग्रेट विजय।
0: करगिल की दुर्गम और ऊंची चोटियों में भारतीय जवानों ने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया उसी का नतीजा था एक शानदार जीत। लेकिन इस जीत के साथ भारत के लिए कई सबक भी थे। दुश्मन जिस तरह भारतीय सीमा में घुसकर बैठ गया था उसे भारत की खुफिया तंत्र की नाकामी माना गया। इस लड़ाई में भारत के 527 वीर शहीद हुए और 1000 से भी ज्यादा घायल हुए। भारत आज भी करगिल में शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देता है, जबकि पाकिस्तान ने करीब 11 साल बाद अपने 453 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। हालांकि नवाज शरीफ के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे। 453 से 4000 के आंकड़ों के बीच उलझा पाकिस्तान, क्या करगिल से कुछ सीख ले पाया? शायद नहीं।
15: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
16: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
15: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
17: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
18: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
19: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
20: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
19: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
21: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
22: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
2: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
2: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
3: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
5: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
4: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
5: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
4: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03, 62002434 03।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
8: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
1: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
8: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
1: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
8: जहां हर निवाला कहे वाह।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
4: इट्स पी ऑन द ट्रैक।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें।
0: केंद्रीय पंचायती राज पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पशुओं के नस्ल सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुंगेर दौरे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया के बाद लखीसराय में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्लांट की स्थापना की गई है। इससे पशुओं के विकास और दुग्ध उत्पादन में काफी लाभ होगा।
2: मदर डेयरी का भी काम बहुत तेजी से जमालपुर में शुरू होगा, डेयरी का। और इसके साथ साथ पशुओं के विकास के लिए और पशुओं के जो दूध देने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करने को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए भी एक पूर्णिया में बना है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट और एक लखीसराय में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट लगाएगा, फॉर्म लगाएगा, ताकि अच्छे क्वालिटी का सीमेन कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग हो सके।
0: श्री सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के विभिन्न भागों का दौरा किया और क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ की अपील का स्वागत किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इसे जरूर अपनाना चाहिए।
3: नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज है समस्या आ गई है हम लोगों के सामने, विश्व समस्या है, खास करके पश्चिम एशिया का, उसके चलते उन्होंने सावधान किया है कि एक संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई गलत बात नहीं कही है, एकदम ठीक बातें हुई है, उसको अपनाना चाहिए। इससे कोई ऐसा ना समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई चीज थोपा गया है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सरावगी ने कहा कि जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य से खेलने का प्रयास किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
4: केंद्र की सरकार लगातार सक्रिय है। जो भी इसमें मास्टरमाइंड से लेकर जो लोगों ने यह इतना बड़ा अपराध किया है, बच्चों के जीवन से खेला है, उसको किसी हालत में भी सरकार बकसने वाली नहीं है। लगातार कार्रवाई हो रही है, CBI को जांच दी गई और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रही है।
0: पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने

0: अपने विधानसभा क्षेत्र भागलपुर के बिहपुर में एक खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की मांग रखी है। श्री शैलेंद्र ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसरों के विस्तार और श्रमिक हितों से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने उन्हें सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह बिहार के संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में अगले 3-4 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज सारण जिले के मस्तीचक में 150 करोड़ रुपए की नेत्र चिकित्सा पहल की शुरुआत करते हुए ये घोषणा की है।
1: हमारा टारगेट है कि कम से कम 50,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम फिजिकली जो पूरा देखेंगे।
0: अडानी समूह अखंड ज्योति आई अस्पताल के सहयोग से सारण में अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहा है। इसके तहत आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। समूह प्रमुख गौतम अडानी ने बिहार की भूमि को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की भूमि बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ है।
1: यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री सत्यपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली।
0: प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामान, उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतें और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा के करीब रक्सौल बीरगंज मैत्री पुल पर एसएसपी जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध व्यक्ति से प्राप्त पासपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान चीनी नागरिक याओ सू जांग के रूप में की गई है। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत में प्रवेश के उद्देश्य, उसके संपर्क और गतिविधियों की जांच में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। श्री शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच समन्वय भाजपा की असली ताकत है। श्री जायसवाल आज किशनगंज में पार्टी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जिला प्रशिक्षण वर्ग 2026 के समापन सत्र में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
2: भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम और प्रशिक्षण चलता रहता है। हम चुनाव के दूसरे दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग जो है, कार्यकर्ताओं को और सरकार के साथ कैसे समन्वय और भी संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया है।
0: पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन, विचारधारा और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 18 मई, राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहे बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संग्रहालय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि संग्रहालय वर्तमान और अतीत तथा भविष्य के बीच सेतु का काम करते हैं। ये हमें विरासत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इस अवसर पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार इकाई की ओर से पटना समेत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 80 नए अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण और AI आधारित अग्नि नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य अग्निशमन सेवा को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा। जहानाबाद जिले के अरवल मोड़ के समीप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के प्रति जागरूक किया गया। भारत स्काउट एंड गाइड की टीम ने जहानाबाद के उर्दू कन्या विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, टीआरई 4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आप सभी को सब परिवार रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं आप पूरे परिवार के साथ खुश, तंदुरुस्त और बेहतर होंगे। रेडियो रिमझिम का आपका संदेश मिला कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह रविवार को शाम को 7:45 से और इसका पुनः प्रसारण सोमवार के सुबह 7:10 से होता है। यह कार्यक्रम आपके विचार से, आपके सुझाव से और आपके आदेश के अनुरूप होता है। आप जो सप्ताह भर रेडियो रिमझिम 90.4 के कार्यक्रम रेडियो से, ऐप से, इंटरनेट से, किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, यदि इसमें कहीं कमी रह जाती है या किसी कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का आपका अनमोल सुझाव हमें जब प्राप्त होता है उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि हम जो है सेवक हैं और आपके आदेश का अनुपालन करना हमारा परम कर्तव्य है। रेडियो रिमझिम लंबे समय से स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज को पहुंचाता रहा है और सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता है जो जहां हमें सुन रहा है वह स्वस्थ रहे, निरोग रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने घर परिवार के साथ जुड़ा रहे। रेडियो रिमझिम आपका संदेश मिला कार्यक्रम सभी कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त सारांश होता है जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करते हैं और हम ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमारे अनमोल श्रोता जो देश विदेश दूसरे प्रदेशों में भी रहते हैं रेडियो रिमझिम के उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपके संदेश को हम बड़े ही संयम से संग्रहित करते हैं, फिर उस पर कार्य करते हैं। आपका संदेश मिला में सभी उम्र वर्ग के लोगों का जो विचार आता है, जो सुझाव आता है, उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से ही एक सेवक बनकर सदैव श्रोताओं के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से करते आया है, जिसका परिणाम यह है कि आज जिले के तमाम पंचायतों में या नगर पंचायत या नगर परिषद क्षेत्र हो, जब भी हमारे प्रतिनिधि जाते हैं उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है और कई लोग वहीं पर अपने सुझाव और विचार भी देते हैं। आपको पता ही है रेडियो रिमझिम सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत अपने बातों को रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा जीविका के जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं का बना हुआ है उनके बीच जाकर अपने बातों को रखता है। इसके अलावा जो हमारी आशा दीदी हैं, एनम दीदी हैं, या जो आयुष मंदिर बना हुआ है वहाँ भी हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, उनके विचारों को लेते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जन जन तक जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि आवाज से व्यक्ति की दुनिया बदलती है, भावना बदलता है और विचार में भी परिवर्तन होता है। चंदन के वृक्ष के पास यदि दूसरा वृक्ष भी रहता है वह भी चंदन के तरह महकना शुरू कर देता है, तो हमारे जितने भी श्रोता हैं वह चंदन के समान हैं और उनके संसर्ग में रहने से हमें भी कुछ बोलने का, समझने का अवसर मिलता है। आपका जो संदेश व्हाट्सएप, ईमेल या फेसबुक के इनबॉक्स के माध्यम से आता है वह बड़ा ही लाजवाब होता है। कई व्यक्ति उलाहना करते हैं, कई व्यक्ति प्रेम पूर्वक संदेश देते हैं, कई लोग फोन करके अपने बातों को लिखवाते हैं। आज के दौर में जहाँ किसी के पास समय नहीं है वहीं पर हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के श्रोता अपने बात को रखने के लिए हर यांत्रिक यंत्र का उपयोग करते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। हम अपने श्रोताओं से बहुत कुछ इस लंबे समय में सीखने का मौका मिला। कई बार जब हम क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो हमारे आदरणीय श्रोता बड़े ही प्रेम से बात करते हैं, अपना समय देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। हम एक गुमनाम व्यक्ति हैं और हमारी कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन आपके वजह से रेडियो रिमझिम की पहचान राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिले स्तर पर हो गया, जिसके वजह से हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। रेडियो रिमझिम सभी श्रोताओं के दिल में रहता है, मन में रहता है। एक दूसरे के भावनाओं का हम लोग कद्र करते हैं। हम अपना प्रसारण सुबह 5 बजे रेडियो पर शुरू करते हैं और रात को 11:10 पर समाप्त करते हैं, लेकिन ऐप के माध्यम से 24 घंटे हमारा प्रसारण चलता है। कई नए श्रोता जुड़ते हैं, उन्हें बताते चले रेडियो रिमझिम के नाम से फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग है, जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट है सबका सफल संचालन हम लोग करते हैं। रेडियो रिमझिम के पास मेरे जिंदगी का अनुभव मिलता है और जो युवाओं की शक्ति है, ऊर्जा है, उसके माध्यम से हम बेहतर प्रसारण कर पाते हैं। समय के साथ बचपना, युवावस्था, जवानी समाप्त होते जाता है और व्यक्ति अंतिम समय में वयोवृद्ध अवस्था में पहुंचता है और वह अवस्था यह होता है जिसमें जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कई परिवार के बच्चे हैं जो अपने यहाँ के वयोवृद्ध व्यक्तियों को बैठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके जिंदगी का अनुभव सुनते हैं और खूब हंसते भी हैं। क्या ऐसा होता था कि गांव में लाइट नहीं था, ढेबरी के दिया से आप लोग पढ़ते थे, वह समय कैसा होगा? फोन पर बात करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाकर कहीं फोन पर बात होता था। 50 साल पहले जब गांव में डाकियां आते थे तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे कि मेरा पत्र आया, मेरा पत्र आया। वह भी दौर था। आज जो थामे गोपालगंज, मीरगंज या सिधवलिया, बैकुंठपुर के तरफ जो ट्रेन चल रही है, आज से कुछ समय पहले वह मीटर ग्रेज
1: ट्रेन हुआ करती थी, शाम को 6 बजे यदि आप सांसा मूसा बैठते थे तो अगले दिन दोपहर 2 बजे तक हाजीपुर पहुंचते थे। वह भी एक दौर था और आज का भी दौर है। उस दौर में भी लोग खुश रहते थे, आज के दौर में भी खुश हैं। जिंदगी में ज्यादा पाने की लालच में हम अपने जीवन का मूल्यवान समय नष्ट कर देते हैं। जीवन का जो समय है वह बड़ा ही अनुपम है। जीवन में धन के बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन धन के लिए यदि हम पागल होते हैं तो यह बेहतर नहीं है। कहा जाता है कि बच्चा जब धरती पर आता है तो माँ के आंचल में उसके खाने के पीने के लिए दूध आ जाता है। यह ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक देन है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। हमें अपने कर्तव्य को, काम को बेहतर ढंग से करना है। जिसे जो भी जिम्मेवारी मिला है यदि वह बेहतर ढंग से करता है तो यह राष्ट्र सेवा भी होगा और देशभक्ति भी होगा। हम अपने काम से यदि अनमने मन से रहते हैं तो न मेरा प्रगति होगा और न कार्य देने वाला का प्रगति होगा। इसलिए जहाँ रहिए संपूर्ण रहिए, आधा अधूरा काम जो है बेहतर नहीं होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम में कई रिकॉर्डेड कार्यक्रम हमने इस सप्ताह लगाया है। भारत वर्ष की कहानियाँ, हवा महल, बहुत तरह के कार्यक्रम जो है सुबह शाम लगाए गए हैं। और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं वह अपने निश्चित समय पर चल रहे हैं। और समाचार जो राष्ट्रीय या प्रांतीय है वह भी व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। आप सबका स्नेह है, आशीर्वाद है, सहयोग है, तब हम बेहतर कर पाते हैं। ना तो मेरी औकात है बेहतर करने की, ना क्षमता है, लेकिन जिस तरह एक कमजोर व्यक्ति भी दौड़ के मैदान में जब दौड़ने लगता है और दर्शक दीर्घा से लोग चिल्लाने लगते हैं दौड़ जाओ दौड़ जाओ, तो उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है, एक ऊर्जा आ जाता है, एक नैसर्गिक आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह आप लोगों का स्नेह और प्रेम के वजह से हम जो है रेडियो रिमझिम का बेहतर से बेहतर प्रसारण करने का प्रयास करते हैं। फिर भी कहीं न कहीं कुछ चूक होती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों का जब संदेश आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अनुभव होता है कि समाज के सभी वर्ग, धर्म, जाति, उम्र के लोग हमें सुनते हैं और हमें अपना स्नेह देते हैं। हमारे साथ मिस्टर सोनू जी भी बैठे हैं। आपका बहुत सारा संदेश है, बात तो खत्म नहीं होगा, तो सोनू जी आपके संदेश को पढ़ रहे हैं और मैं पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद
3: जी। सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश फोन के माध्यम से लिखवाया गया है, लाल बहादुर प्रसाद, ग्राम नाधना, पंचायत कल्याणपुर, प्रखंड बरौली से संदेश लिखवाते हैं। सुझाव देते हैं हर गांव की कहानी में इनके गांव पर भी ध्यान दिया जाए कि इनके गांव का सड़क टूट गया है और पुल टूट गया है, तो इसका अपील रेडियो रिमझिम करे। और अंत में श्री कृपा शंकर सर को मेरा नमस्कार। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
2: आदरणीय लाल बहादुर प्रसाद जी, आपके पूरे परिवार को, नाधना पंचायत के सभी निवासियों को और प्रखंड बरौली के सभी भाई बहनों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह प्रेम की डोर है कि लाल बहादुर जी अपने बातों को रेडियो रिमझिम तक पहुंचाए हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, हर ग्राम पंचायत में मुखिया जी के पास, जिला परिषद सदस्य के पास और स्थानीय विधायक के पास पर्याप्त अनुदान या फंड होता है, जो अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करे। हम लोग पंच, वार्ड, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, विधायक, सांसद, सबको हम ही लोग चुनते हैं। और उनको चुनने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे गांव का, हमारे पंचायत का, हमारे क्षेत्र का जो सामूहिक कार्य हो उसे करें, यह उनकी जिम्मेवारी बनती है। लाल बहादुर प्रसाद जी रेडियो रिमझिम जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर सकता है, अपील कर सकता है कि नाधना पंचायत में, प्रखंड बरौली में जो समस्या है उसे ठीक किया जाए। यदि गांव का सड़क टूट गया है तो उसे बनाया जाए। यह हमारी भी अपील होगी, क्योंकि सरकार की भी मंशा है कि हर गांव में बिजली और हर गांव जो है मुख्य सड़क से जुड़ा रहे। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है। यदि इसमें कहीं चूक हो रही है तो एक आम आदमी होने के नाते हमें भी अपने मुखिया जी से, जिला परिषद सदस्य से, स्थानीय विधायक से एक बार कम से कम व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए और बताना चाहिए। जहां आज के दौर में लोग अपने परिवार, बच्चों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, उस दौर में श्री लाल बहादुर प्रसाद जी हैं जो सामूहिक कार्य के लिए रेडियो रिमझिम में सूचना दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपके पंचायत की जो सड़क टूटी है वह जल्द से जल्द बनेगी और जो पुल भी टूट गया है वह भी बनेगा। बस अपने साहस को कम मत कीजिए, सही जगह पर सही बात को पहुंचाते रहिए। यदि हम किसी होटल में जाते हैं और खाना में यदि मक्खी गिर गई तो हम जो है बैरा से नहीं बोलेंगे, उस होटल के मैनेजर से बोलेंगे ताकि वह जो है अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करे। तो यदि सही बात सही जगह पर पहुंचाई जाती है तो उस समस्या का समाधान होता है। आप हमारे आदरणीय श्रोताओं में से एक हैं और विशेष करके आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आपका संदेश आते रहता है। यह एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है जिसका निर्वहन आप करते हैं। हम इसका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र का जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान होगा। रेडियो रिमझिम परिवार से जो स्नेह का डोर, दिल से दिल का डोर आपने बांधा है, इसे और मजबूत कीजिएगा। हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार सिंह कोन्हवा से भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम और हालचाल काफी अच्छा लगता है। मेरा सुझाव है कि आईपीएल का न्यूज भी समय समय पर दिया जाए। हम चाहते हैं ऐप के माध्यम से आईपीएल के बारे में बताया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, कोन्हवा मोड़ के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम के शुरू में ही मैंने कहा कि जो हमारे श्रोता हैं वे ही हमारे अस्तित्व हैं, हमारी पहचान हैं, हमारी दुनिया हैं। वे हमें सुनते हैं, समझते हैं, अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। यह तालमेल जो है भारतवर्ष के किसी रेडियो स्टेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। रेडियो रिमझिम ने एक नया आयाम गढ़ा, एक नया पैमाना तय किया कि हमारे श्रोता अपने बातों को बेझिझक होकर हम तक पहुंचाएंगे और हम उस पर कार्य करेंगे। और आपने ऐसा ही किया। आप आपका जो सुझाव है, हम अपने युवा साथियों से जो रेडियो रिमझिम की टीम है इस पर चर्चा करेंगे। यदि संभव होगा तो वे लोग जरूर आईपीएल का समय समय पर सूचना देते रहेंगे ऑनलाइन कार्यक्रम करते समय, ताकि आपको हमेशा अप टू डेट हम रख सके। यही मेरा कर्तव्य भी है। आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
3: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है भीतभेरवा गोपालगंज से उमेश राम जी का। लिखे हुए हैं, रेडियो रिमझिम हमारे पंचायत में है, सभी कार्यक्रम मनमोहक होते हैं, हालचाल बिरहा हेलो माई च्वाइस समय से चलता है, अच्छा लगता है। सुबह का भक्ति गीत भी बहुत अच्छा लगता है। तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, भीतभेरवा पंचायत के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जब कोई हमारी प्रशंसा करे, बड़ाई करे, और यह मनुष्य का गुण होता है कि अपनी प्रशंसा सुनकर वह खुश होता है। साथ में यह कर्तव्य भी होता है कि यदि हम किसी कार्य में उसके शिखर पर हैं, तो वह हमेशा बने रहने के लिए हमें लगातार परिश्रम करना पड़ता है। बहुत अच्छे दार्शनिक ने कहा है कि किताबों की शिक्षा ज्ञान का विकास करती है, लेकिन जो बड़ों की शिक्षा होती है वह बुद्धि का विकास करती है। इसलिए हमें भी काफी अच्छा लगा कि हमारा सारा कार्यक्रम शेड्यूल से चलता है और आप लंबे समय से सुन रहे हैं। लेकिन मेरी भी एक शिकायत है, हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता हैं जो हमें सुनते हैं, लेकिन कभी कभार आपका संदेश मिला में अपने संदेश को भेजते हैं, और कुछ ऐसे शानदार और जानदार श्रोता हैं कि प्रत्येक सप्ताह अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। उन सभी श्रोताओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जो भी प्रसारण करते हैं वह आपके विचारों पर, सुझावों पर और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की सोच जो है एक साइड में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब अपने बातों को हमको किसी न किसी माध्यम तक पहुंचाते हैं तो बड़ा ही बेहतर होता है। हमें आज भी याद है शहाबुद्दीन टोला देवापुर के एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक दिन वह अपने झोला में दिखा रहे थे कि देखिए अभी अभी हम बाजार से रेडियो बनाकर ला रहे हैं, ताकि रेडियो रिमझिम को सुनते रहें। और कई लोगों को यह पता भी नहीं है कि आज के डेट में रेडियो जो है बिजली से चलने वाला भी आ गया है, सोलर से भी चलने वाला आ गया है, और बैटरी से तो पुराने समय से चल रहा है। क्योंकि बैटरी का दाम इतना ज्यादा हो गया है, तो बिजली वाला जो रेडियो है वह लंबे समय तक चलता है। तो हम निवेदन करेंगे कि जो रेडियो रखे हैं उसे बिजली वाला अपना रेडियो बना ले, ताकि बिजली के लाइन पर चलता रहे। और आजकल जो रेडियो मिस्त्री हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था रेडियो में रखे हैं कि अगर बिजली का लाइन कट भी गया तब पर भी रेडियो बजते रहेगा। हमने उन्हें भी यह सुझाव दिया था। जीवन का एक दौर ऐसा आता है कि व्यक्ति तन्हा हो जाता है, उस समय जो है रेडियो ही एक सहारा बजता है, जिससे हम अपने दिल की बातों को सुनते हैं, मन की बातों को सुनते हैं। व्यक्ति बचपना में चला जाता है, जवानी में कमाई के फेर में चला जाता है, और जब तक बच्चे बड़े होते हैं व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, और बच्चे अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं, और वयोवृद्ध व्यक्ति जो है तन्हा और अकेला हो जाता है, उस समय रेडियो जो है उसका सच्चा साथी होता है। कई ऐसे हमारे आदरणीय श्रोता हैं जो रेडियो पर हालचाल सुनने के लिए बेताब रहते हैं। कभी कभार यदि 2 मिनट 1 मिनट लेट हो गया तो रेडियो रिमझिम के कार्यालय में फोन करके पूछते हैं कि 3 मिनट लेट हो गया, अभी तक नहीं चला। तो उन तमाम श्रोताओं का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं कि आपकी तीव्रता के वजह से हम भी तीव्र हो जाते हैं। व्यक्ति यदि काम करता रहे तो जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। व्यक्ति बूढ़ा कब होता है? जब उसके बच्चे उसे बूढ़ा घोषित करने लगते हैं, दबाव देने लगते हैं, उसे तनहा छोड़ देते हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वे अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं। व्यक्ति काम करते रहे, परिवार से जुड़ा रहे, हमेशा युवा रहेगा, हमेशा जवान रहेगा, और अपने काम को नियमित और समय से करे तो और भी बेहतर होता है। जीवन में काम कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इंसान खत्म हो जाता है। जो काम हमारे पूर्वज छोड़ जाते हैं उसे आने वाले पीढ़ी करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखे, कभी भी कोई विवाद, कोई कर्ज अपने जीवन काल में अपने बच्चों को प्रेषित न करे, क्योंकि उसे भी उस लड़ाई में उतरना पड़ेगा, उसका भी जीवन जो है हमारे आपके तरह झंड हो जाएगा। इसलिए कर्ज और विवाद अपने बच्चों से दूर रखें और अपने जीवन काल में ही उसे समाप्त करें, यही सबसे बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है, प्रीति कुमारी आरआर मोड़ गोपालगंज से भेजी है। मुझे आपका संदेश मिला कार्यक्रम काफी अच्छा लगता है, इस कार्यक्रम से प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलता है। ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया जाए काफी अच्छा होता है, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
2: आदरणीय प्रीति जी, आपके माता पिता को, आरआर मोड़ के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम कहाँ कब सीखते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य का जीवन इतना लंबा नहीं दिया है कि वह स्वयं गलती करे और स्वयं सुधार करे। इसका सीधा और सरल उपाय यह है कि यदि दूसरा कोई गलती किया है तो उसके गलतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो है उस तरह की गलती अपने जीवन में नहीं करें। जीवन में हमेशा शिखर पर रहने के लिए निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम घर बनाते हैं तो अगल बगल के लोग जो है परेशानी में डाल देते हैं, हम कक्षा में खूब मन लगाकर पढ़ते हैं, खून जलाते हैं, उसके बाद भी अच्छा अंक नहीं मिलता है। कभी कभी यह लगता है ये हम ई रिक्शा चलाते हैं, सुबह से शाम घूमते रह गए, आज रविवार था सवारी नहीं मिला। यह सब चिंतनीय विषय जरूर है, लेकिन ऊपर वाले ने जब आपको एक अवसर दिया है तो कोई न कोई रास्ता देगा। हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप सही हैं, सच्चे हैं, काम के प्रति वफादार हैं, तो आपकी वफादारी का फल जो है अवश्य मिलेगा। हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, समस्या को हमें हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। APJ अब्दुल कलाम साहब के जीवन को, उनके आत्मकथा को हिंदी रूपांतर में हम पढ़ेंगे तो हमें जो है बहुत सारी ज्ञान की अनुभूति होगी। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद हैं, दशरथ मांझी जी हैं, जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन अपने जुनून से पूरे देश का हीरो बने, गौरव बने। इसलिए व्यक्ति को काम के प्रति जुनून रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, काम नहीं है। आप जब गांव में जाइए तो गेहूं काटने वाला लोग नहीं मिल रहा है, काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। सारे लोग जो है विदेशों में, प्रदेशों में निकल गए हैं। तो व्यक्ति जो काम करने वाला है, पक्षी के तरह कहीं ना कहीं दाना चुनने निकल जाता है, और जो काम करने वाला नहीं है वह कहीं भी रहेगा, उसे काम ही नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमारे देश के पूर्वजों ने कहा है कि परिश्रम का सदैव पूजा होता है और परिश्रम करने वाला सदैव विजयी होता है। अपने आप को हमें कार्यों में ढालना होगा और नींद को कम और मोबाइल को कम चलाना होगा। यदि हम मोबाइल कम चलाएंगे तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। आज के दौर में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि एवरेज औसत एक युवा जो है 6 से 8 घंटा 10 घंटा मोबाइल में अपना समय दे रहा है, लेकिन वह यदि पुस्तकों को पढ़े, वह जो है अच्छे अच्छे समाचार पत्रों को पढ़े, तो उसके ज्ञान में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगा। संसार का कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है अधिकारी वर्ग का जिसमें इंटरव्यू न होता हो। आप रिटेन में कितना हूँ लिख पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आपका सामान्य ज्ञान मजबूत नहीं है तो जीवन में बेहतर बनने में परेशानी होगी। तो विशेष करके जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपना जी के सामान्य ज्ञान मजबूत रखना पड़ेगा, ताकि अगला जो है आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज को चेक करता है, और जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है वह काफी अनुभवी व्यक्ति होता है। विशेष करके वह लोग वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं जिन्हें जिंदगी के खट्टे मीठे चीजों का अनुभव होता है, और आप यदि इन सब चीजों का तैयारी करते हैं तो अच्छे से अच्छे पद को डिजर्व करते हैं और आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है सासामूसा से जाकिर हुसैन जी का। रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा सलाम। मैं रेडियो रिमझिम का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम सुनता हूँ। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम चलाया जाए, सुबह का विषय सूची भी बताया जाए जो पहले बताया जाता था, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
2: आदरणीय जाकिर हुसैन जी, आपके पूरे परिवार को, सासामूसा के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जो पुरानी बातों को याद रखे और हमें भी याद कराता रहे। आपने जो विषय सूची की बात की वह पिछले 2 साल से हम प्रसारित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे अत्यंत पुराने श्रोताओं में से एक हैं। आपको आज भी याद है कि सुबह 7 बजे के पहले हम पहले रेडियो पर बताते थे कि आज सारा दिन कौन सा कार्यक्रम कब कब प्रसारित होगा, जिसका विवरणी हम देते थे, और वह विवरणी पिछले 2 साल से नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आपको धन्यवाद हम इसलिए दे रहे हैं कि हम भूल गए लेकिन हमारे परम आदरणीय श्रोता नहीं भूल पाए। दूसरी बात जो आपने रखा ऑनलाइन कार्यक्रम का, उसे हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन कार्यक्रम नियत समय से चल रहा है, और इस सप्ताह से बहुत सारे रिकॉर्डेड कार्यक्रम जो है बहुत ही बेहतर से बेहतर है, जिसे हम प्रसारित करने जा रहे हैं सुबह और शाम। उसे आप जरूर सुने। आपको पता ही है कि राष्ट्रीय समाचार सुबह 8 बजे, दोपहर 2:15 पर और रात में 8:45 पर और फिर रात को 11 हम प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में करते हैं, ताकि पूरे दुनिया का सूचना हमारे आदरणीय श्रोताओं के पास पहुंचे। आपने जो पुरानी बात हमें याद दिलाई, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और नए कार्यक्रम आप कौन सा सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। हम जो है आपके विचारों का, आप जैसे श्रोताओं के विचारों का भूखा प्यासा रहते हैं। हमें भी लगता है कि कई बात हाथ से निकल जाता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो देश दुनिया के कोने कोने में हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के श्रोता हैं, हमें याद दिलाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके लिए हम आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं।
3: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है शीतल बरदाहा गोपालगंज से अखिलेश कुमार जी का। रेडियो रिमझिम के सभी बड़े जनों का मेरा प्रणाम नमस्कार है। बचपन से आज जवानी तक गोपालगंज का हालचाल रेडियो रिमझिम के माध्यम से सुनता हूँ। अभी मैं पटना में जॉब करता हूँ। घर की याद आने पर रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनता हूँ, काफी अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। अभी तो संदेश कई है, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम से निकलना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
2: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्र के निवासियों को, बिहार की राजधानी पटना में जहां भी आप कार्य करते हैं, आपके सभी साथियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब बचपन से जवानी तक रेडियो रिमझिम को सुनते आए हैं। यह बातें भाव विभोर कर देती है। हमें भी अच्छा लगता है, कई बच्चे जो है रेडियो रिमझिम के हेलो क्विज कॉन्टेस्ट कार्यक्रम में भाग लिए थे, और आज जब कभी कभी आपके संदेश मिला में वे संदेश देते हैं कि हम कर्मचारी बन गए, सरकारी पदाधिकारी बन गए, स्वच्छता में गए, अन्य कार्यक्रमों में गए, तो यह सुनकर मन जो है आनंद से भाव विभोर हो जाता है। रेडियो रिमझिम उस दौर में आया जिस दौर में बिजली का अभाव था, सूचना मिलने का अभाव था। उस दौर में रेडियो रिमझिम ने अपना प्रसारण शुरू किया। जिस हालचाल या समाचार को जानने के लिए हमें समाचार पत्रों को खरीदना पड़ता था, वहाँ निशुल्क जो है रेडियो रिमझिम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचाता है। एक बात हमें याद आया, एक श्रोता ने बताया था कि रेडियो रिमझिम के नाम से हालचाल गोपालगंज जो न्यूज आता है उसमें वीडियो डाला जाए, और हमने उस श्रोता से कहा था कि हर मोबाइल में 1.5 से 2 GB हमें जो है डाटा मिलता है, यदि हम वीडियो डाल दें 10 मिनट का, आप देखते रह जाएं, तो 1.5 GB डाटा जो है आपका खत्म हो जाएगा जो 24 घंटा चलाना है। इसलिए हालचाल गोपालगंज को ऑडियो के माध्यम से हम देते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब भी अपने गांव जवार या घर की याद आती है, रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं, हमें भी काफी अच्छा लगा। रेडियो रिमझिम में जो आरजे हैं स्थानीय स्तर के हैं, जो बातचीत होती है भोजपुरी हिंदी मिक्स रहता है, जो सुनने में भी और समझने में भी काफी अच्छा लगता है, और गीत संगीत और कार्यक्रमों को हम लोग सुनते रहते हैं, तो यह सब चीज जो है रेडियो रिमझिम को बेहतर बनाता है। हम लोग बस यही ध्यान देते हैं बोलते समय लिंग वचन सही और शुद्ध हो, और ऐसी सहज और सरल भाषा का उपयोग किया जाए कि एक आम आदमी से लेकर एक पदाधिकारी तक हमारे बातों को उन तक पहुंच जाए। भाषा जो है एक संकेत है, जो अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम एक दूसरे के पास प्रेषित करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपका जो प्रेम है, जो आपका अनुभव है, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आपने शामिल किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके तन्हाई का साथी रेडियो रिमझिम सदैव बना रहेगा। और आपको जानकारी दे दें, रेडियो रिमझिम के नाम से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यह सब है। और बदलते दौर में व्यक्ति को सीखना पड़ता है। कई लोग हमारे पास फोन करते हैं कि सर इस कार्यक्रम का कौन सा नंबर है, इस कार्यक्रम का कौन सा नंबर है। रेडियो पर तो बताया ही जाता है, लेकिन रेडियो रिमझिम के नाम से जो फेसबुक है उस पर एक पोस्टर लगा दिए हैं कि एसएमएस का यह नंबर है, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का यह नंबर है, हेलो माई चॉइस का यह नंबर है, ताकि आपके मोबाइल में ही हर चीज उपलब्ध रहे, हमें कहीं कुछ खोजना नहीं पड़े। जब कभी दूसरे प्रदेशों से लोग फोन करते हैं और हम पूछते हैं कि यह नंबर आपको कहां से मिला, तो वे लोग बताते हैं कि रेडियो रिमझिम का फेसबुक से हमें आपका कार्यालय का नंबर मिला। तो बदलती दुनिया में हमें भी बदलना है। आपको बताते चले, जब मेरा उम्र 54-55 वर्ष हुआ, उस समय जो है हमें कंप्यूटर सीखना पड़ा, ईमेल कैसे भेजा जाता है, मंगाया जाता है वह सीखना पड़ा, और छोटी छोटी बारीकियां रेडियो प्रसारण के लिए या संचालन के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए उस पर हमने भी ध्यान दिया। और यह हम भी कोशिश करते हैं कुछ नया रोज सीखे। कभी आदरणीय अधिवक्ता गण के पास बैठते हैं, कभी किसी शिक्षक के पास बैठते हैं, कभी किसी पदाधिकारी के पास, कभी किसी किसान के पास, कभी किसी जुडिशियल अधिकारी के पास। यह जो अनुभवी लोग हैं, उम्र उनका चाहे कोई भी हो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने और समझने की को मिलता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग जो है, जब आप विकास के दौर में आगे जाइएगा तो उन्हें जलन होगा, उन्हें ईर्ष्या होगा, आप घर बनाएं, गाड़ी खरीदें, पत्नी के लिए गहना खरीदें, आप अपने मेहनत से कीजिएगा, लेकिन उनके अंदर जलन होगा, ईर्ष्या होगा। यह जो है पैमाना बताता है कि आप जीवन के दौर में उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और जब तक विरोध ना हो तब तक जिंदगी का मजा ही नहीं आता है। जिस तरह हवा जो है कितना ही दबाए, आपको आगे बढ़ना है और आप जीवन में आगे बढ़ते जाइएगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस अपने जीवन का दिशा तय रखना है, लक्ष्य स्पष्ट रखना है। रेडियो रिमझिम हर पल हर जगह आपके साथ है, और हम लोगों ने जो एक स्नेह का डोर, प्रेम का डोर बनाया है, उसे हम बनाए रखेंगे। अब अंत में हमें भी जाने की इजाजत दीजिए। आप अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, तरह तरह की बीमारियां आज के दौर में आ रही है, उससे बचना है और स्वस्थ और लाभदायक जीवन बिताना है। इसी के साथ आप सभी को एक बार हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जाने की इजाजत लेते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है, रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज।

0: से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
5: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
4: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
5: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो,
13: तो क्या हुआ?
12: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

0: पे आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
2: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
2: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
6: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
7: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरूद्व ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: ठक ठक
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
14: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
14: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
12: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में?
17: क्यों, क्या हुआ है?
12: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
17: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
12: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
14: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, मोहम्मदपुर में पीट पीट कर एक प्रेमी की कर दी गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सभी थानों पर आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुंडा परेड का हुआ आयोजन। 33 शिक्षकों को जिला पदाधिकारी ने किया निलंबित। रतन सराय में कांग्रेस पार्टी ने दिया एक दिवसीय धरना और हम पार्टी अब करेगी गरीब चौपाल का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बीती रात मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम बादल कुमार सिंह, पिता हरेंद्र सिंह, जो झकरा थाना गोविंदगंज जिला पूर्वी चंपारण का निवासी है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए मझवलिया गांव में पहुंचा था, इसी दौरान प्रेमिका के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और लाठी डंडे से बुरी तरह से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और FSL की टीम के माध्यम से साक्ष्य संकलन किया गया है और इस मामले में प्रेमिका के परिवार के 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जांच कर रही है। इस कांड को लेकर सदर SDPO 2 राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
19: मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझवलिया में बीते रात्रि सुबह में एक लड़का जिसका नाम बादल कुमार जो कि गोविंदगंज थाना मोतिहारी का रहने वाला है, अपने प्रेमिका से मिलने ग्राम मझवलिया के घर पे आ गया, जिसका कि पूर्व से काजल कुमारी पिता अनिल सिंह से प्रेम प्रसंग चलता था, जबकि काजल कुमारी शादीशुदा है, एक बच्चे भी है, लेकिन अभी वर्तमान पति के साथ उसका संबंध ठीक नहीं था और तत्काल अपने मायके मझवलिया में रहती थी। उससे मिलने जब बादल आया और उसके तो उसके परिजन द्वारा उसे पकड़ कर उसके साथ मारपीट किया गया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसे इलाज हेतु बगल के ट्रॉमा सेंटर पर ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है एवं बरामद सभी मोबाइल को खंगाला जा रहा है। सबको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है। आवेदन प्राप्त होने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तत्काल वो लड़की और उसकी माँ को पूछताछ हेतु थाना लाया गया है।
20: पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज जिले के सभी थानों पर गुंडा परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान सूचीबद्ध असामाजिक तत्वों को थाने पर बुलाकर कड़ी चेतावनी दी गई तथा उन्हें किसी भी प्रकार की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। इस दौरान लाल नोटिस लेकर गुंडा परेड में सभी आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग थाने पर पहुंचे। ये सभी लोग जो न्यायालय से जमानत पर बाहर निकले हैं, उन्हें अब पुलिस प्रत्येक रविवार को थाने पर बुलाकर गुंडा परेड में कड़ी चेतावनी दे रही है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में तैनात कुल 33 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया है। तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के बाद अब इन सभी लोगों पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग 100 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी बना रहे थे। इसकी जब जाँच की गयी तो ये सभी लोग पकड़े गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 13 मई को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की समीक्षा की थी और जांच में पाया गया कि 11 मई को 15 और 17 को जांच की थी और बताया गया कि 13 मई को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की समीक्षा के दौरान जांच में पाया गया कि 11 मई को 15 और 12 मई को 18 शिक्षकों ने विद्यालय से 100 किलोमीटर भी या उससे भी अधिक दूरी से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की थी, जिसके बाद जांच कर निलंबन की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इन सभी शिक्षकों के निलंबन के बाद से तमाम शिक्षकों में भय का माहौल भी देखा जा रहा है। जो लोग नियमों को ताक पर रखकर ड्यूटी कर रहे थे, उन पर अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इधर बरौली प्रखंड के रतन सराय रेलवे स्टेशन पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया। इस शांतिपूर्ण धरना के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गोमती नगर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव को लेकर रतन सराय स्टेशन पर मांग की गई। इस दौरान बरौली प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक्सप्रेस सहित महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। कुचायकोट प्रखंड के मतिया खास पंचायत में राम जानकी मंदिर पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को सुबह कलश यात्रा निकलेगी। महायज्ञ के संयोजक आचार्य शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे से लगभग 1000 कन्याएं कलश यात्रा में सम्मिलित होंगी। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से इस यज्ञ की तैयारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता कर रही थी। मतिया खास के मुखिया रामेश्वर यादव की अध्यक्षता में इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसमें जनता तन मन धन से लगी हुई है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर हम पार्टी के जिला कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने अध्यक्षता की। इस दौरान अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धि प्रकोष्ठ के संजय सिसोदिया भी आए थे। किसान मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन और प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान पार्टी ने निर्णय लिया कि गरीब चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन सहित तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। सभी विधायक एवं विधान परिषद के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 मई 2026 को जिला मुख्यालय में इस गरीब चौपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब इसकी तैयारी में पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं।
18: पिछले 24 घंटों में अलग अलग मामलों में गिरफ्तार सभी 48 लोगों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें बताया जा रहा है कि हत्या के प्रयास और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर तथा शराब की तस्करी में आरोपियों को पकड़ा गया है। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने चालान कर दिया। साथ ही यातायात पुलिस ने भी आज 1,76,000 से अधिक राजस्व की वसूली अलग अलग वाहन चालकों से जुर्माना लगाकर की। वहीं पुलिस ने सैकड़ों लीटर देशी और विदेशी शराब को भी जब्त किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जिले के सभी थानों पर आज चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में चौकीदारों को सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। स्थानीय सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने और पुलिस तथा आम जन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर सूचना तंत्र को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए। इधर नगर थाना की पुलिस ने 26 लीटर से अधिक शराब के साथ एक बोलेरो वाहन को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस निरंतर जांच अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चैन पट्टी स्थित चिमनी के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो गाड़ी, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, पुलिस पहुंची तो इस गाड़ी के अंदर से पुलिस को शराब मिली। हालांकि इस गाड़ी को चलाने वाले और शराब तस्कर फरार हो गए थे। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है और वाहन चालक तथा वाहन के मालिक के विरुद्ध अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के उच्चका गांव पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों को पैनल अधिवक्ता हैदर अली और पीएलवी मुन्ना कुमार की टीम ने मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक अक्षमता, इसके लक्षण, ऐसे व्यक्तियों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के रहने के तरीके, मानसिक बीमार एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के इलाज हेतु अलग वार्ड की व्यवस्था और इन्हें मिलने वाली विधिक सहायता इत्यादि के विषयों पर लोगों को जानकारी दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मोहम्मदपुर में पीट पीट कर एक प्रेमी की कर दी गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सभी थानों पर आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुंडा परेड का हुआ आयोजन। 33 शिक्षकों को जिला पदाधिकारी ने किया निलंबित। रतन सराय में कांग्रेस पार्टी ने दिया एक दिवसीय धरना और हम पार्टी अब करेगी गरीब चौपाल का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
21: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
22: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
22: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
24: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
25: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: सुन रहे हैं आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्हें देख करके ही ऐसा लगता है कि हाय जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। मैं बात कर रही हूँ रेखा जी के बारे में। रेखा जी को एज एन एक्ट्रेस हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं रेखा जी की जिंदगी के थोड़ा सा करीब आपको लेकर जाने की कोशिश करूंगी। आज के शो की शुरुआत से पहले, उनके कुछ बेहतरीन गानों से पहले, कुछ लाइनें हैं जो मैं रेखा जी के नाम कहना चाहती हूँ। मत करो तुम वो वादा जो निभा ना सको, मत चाहो तुम उसे जिसे तुम पा ना सको। मत करो तुम वो वादा जो निभा ना सको, मत चाहो उसे जिसे तुम पा ना सको। प्यार हर किसी का कहाँ पूरा होता है, प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। इसी अधूरे प्यार के नाम आज का ये शो। मिस्टर नटवर लाल फिल्म से पहला गाना

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ और आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड है रेखा जी के नाम। अगला गाना आपको सुनाएं लेकिन उसके पहले मैं जिस अधूरे प्यार के बारे में बात कर रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए, रेखा जी की जिंदगी हमेशा से अमिताभ बच्चन जी के साथ जुड़ी गई है। सभी लोग जानते हैं कि वो एक प्यार इनकी जिंदगी में अधूरा रह गया, लेकिन क्या आपको पता है कि ना सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के साथ बल्कि कितने सारे और लोगों के साथ रेखा जी का प्यार अधूरा रह गया। राज बब्बर जी हो, विनोद मेहरा हो, नवीन निश्चल हो, जितेंद्र हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो या अक्षय कुमार हो, प्यार था तो बहुत रेखा जी में लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं से चूक गए। कहते हैं ना, मुझसे ना सही गैरों से सही तुम्हें दिल का लगाना तो आ ही गया। मुझसे ना सही गैरों से सही तुम्हें दिल का लगाना तो आ ही गया। दुनिया में किसी के हो तो गए, तुम्हें प्यार निभाना आ ही गया। एक और ऐसी ही लव स्टोरी थी, छोटी सी लव स्टोरी थी रेखा जी की जिंदगी में जो एक्चुअली

0: एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
5: प्रसाद क्लिनिक।
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

इस गाने में मुझे लगता है कि जिंदगी का सार छुपा हुआ है। कतरा कतरा मिलता है, कतरा कतरा जीने दो। इजाजत फिल्म से था ये गाना वीकेंड क्लासिक पर। आज का ये एपिसोड है रेखा जी स्पेशल। मैं आपको बता रही थी एक ऐसी लव स्टोरी या एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जो कि रेखा जी की जिंदगी में हुआ था, जो एक्चुअली में एक लव स्टोरी थी ही नहीं। रेखा जी को इस इंसान से प्यार नहीं था, लेकिन ढोंग किया जिससे कि वो अपने एक दूसरे प्यार को थोड़ा सा जला सके। मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन जी को जलाना चाहती थी रेखा जी, इसीलिए संजय दत्त के साथ में उन्होंने प्यार का नाटक किया था। संजय दत्त जो कि रेखा जी से 5 साल छोटे हैं उम्र में। ज्यादा लोग जानते नहीं हैं कि ये रिश्ता भी हुआ था, लेकिन हाँ एक समय था जब रेखा जी के अंदर की अल्हड़ लड़की जाग गई थी और वो चाहती थी कि मेरा चाहने वाला जो है वो मुझे देख के चले। क्या आपको पता है रेखा जी की जिंदगी में चाहे प्यार अधूरा रहा हो, लेकिन करियर उनका जो था वो पूरा हुआ, पर कुछ सपने फिर भी थे जो अधूरे रह गए। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी फेमस सक्सेसफुल एक्ट्रेस, ऐसा कौन सा सपना था जो कि इनका अधूरा रह गया? बताऊंगी आपको उसके बारे में कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो में। तब तक के लिए करते हैं आज की हमारी ये जो सुपरस्टार हैं उनकी जिंदगी को सलाम अगले गाने के साथ, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से।

0: पांव तो पड़ने भी नहीं चाहिए रेखा जी के जमीन पर, आखिर इतने खूबसूरत जो है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि कैसे रेखा जी के भी कुछ सपने हैं जो कि अधूरे रह गए। जहां तक उनका फिल्मी करियर का सवाल है, हमेशा से रेखा जी चाहती थी कि वो दिलीप कुमार जी के साथ काम करें, लेकिन ये सपना उनका अधूरा रह गया। और वो आज तक भी सरेआम सबके सामने कहती हैं कि काश कि मैं कुछ एक छोटी मोटी फिल्म ही सही लेकिन दिलीप कुमार जी के साथ कर पाती। वैसे कि आपको पता है रेखा जी फिल्मों में तो आना ही नहीं चाहती थी। रेखा जी बचपन से एयर होस्टेस बनना चाहती थी। आज की तारीख में भी अगर उनसे पूछें तो वो कहती हैं कि फिल्मी करियर और एयर होस्टेस बनने के बीच में अगर मुझे ऑप्शन मिलता उस समय तो मैं उड़ना ज्यादा पसंद करती। वही हम तो कहेंगे कि फिल्मों के जरिए ही सही, उड़ तो रही ही हैं रेखा जी। कुछ ही देर के बाद मैं आपको बताऊंगी कि रेखा जी किसकी गॉड मदर रही, कौन है वो सुपर फेमस सुपरस्टार एक्ट्रेस जिनको कि रेखा जी ने बनाया, चलना फिरना उठना बैठना बोलना तैयार होना सिखाया। जानने के लिए करना है थोड़ा सा इंतजार, सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक। अगला गाना आपके लिए किशोरदा लता मंगेशकर जी की आवाज में।
1: क्या कहा?

0: नहीं।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: वेलकम बैक। रेखा जी को डेडिकेट करते हुए आज का ये शो। मैं आपको बता रही थी कि कैसे रेखा जी की एक बहुत ही खास दोस्त हैं, जिनकी दोस्ती शुरुआत हुई क्योंकि रेखा जी ने उन्हें ट्रेन किया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे बढ़ा जाता है, चला जाता है, काम किया जाता है, और वो एक्ट्रेस हैं श्रीदेवी जी। रेखा जी जब आई थी इस इंडस्ट्री में तो उन्हें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, उनके रंग के कारण, उनके साउथ इंडियन एक्सेंट के कारण, उनके फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होने के कारण। वो नहीं चाहती थी कि श्रीदेवी जी को भी वही सारी परेशानियां झेलनी पड़े, क्योंकि श्रीदेवी जी भी साउथ से ही आई थी, साउथ इंडियन थी। इसलिए उन्होंने श्रीदेवी को अपने संरक्षण में ले लिया और सिखाना शुरू किया कि कैसे क्या किया जाता है। आज तक भी श्रीदेवी जी कहती हैं कि उन्हें तैयार होना आया है जस्ट बिकॉज ऑफ रेखा जी। इस तरह की इंसान रेखा जी, सबसे प्यार करने वाली इंसान रेखा जी। लेकिन क्या आपको पता है, एक सवाल है जो आज तक रेखा जी से कोई नहीं पूछ पाया है। क्या है वो सवाल, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। फिलहाल खूबसूरत फिल्म से गाना, वो फिल्म जिसमें रेखा जी ने खुद भी कुछ गाने गाए थे, लेकिन ये जो गाना हम आपको सुना रहे हैं ये है आशा भोसले जी की आवाज में, सुनिए।

जी, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो के आज के इस एपिसोड के खत्म होने की बारी आ गई है, लेकिन जाने से पहले जैसा मैंने कहा था, एक सवाल जो रेखा जी से आज तक कोई नहीं पूछ पाया है वो ये है कि रेखा जी, जो मांग में सिंदूर भरती हैं, वो आखिर किसके नाम का भरती हैं? 1980 था वो समय जब ऋषि कपूर और नीतू जी की शादी में पहली बार रेखा जी अपनी मांग में सिंदूर भर के और मंगलसूत्र पहन के सबके सामने पब्लिकली आ गई थी। तब से लेकर के आज तक में किसी इवेंट में, अवार्ड फंक्शन में हम रेखा जी को वही सिंदूर भरे और मंगलसूत्र पहने देख तो लेते हैं, लेकिन किसी में वो हिम्मत नहीं है कि उनसे इसके पीछे का राज पूछ पाए। चलिए, इस राज को राज ही रहने देते हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: मैंने

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: एक सौ ग्यारह जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defence, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the innovation and incubation center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as water logging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization of government vehicle usage in its offices and units and measures for reduction of fuel consumption. The memorandum has been issued by the Office of Police Commissioner in view of the prevailing international situation and Prime Minister Narendra Modi's appeal for austerity measures and reduction in fuel consumption. In IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: मैया।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: बनारस से।
2: जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है।
2: तो क्या हो रहा था?
1: ये पावर लोग चलाते हैं, वही काम हो रहा है।
2: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: बाजी का लोहनी का निका निका ले आके।
2: और सुनाना भी है?
1: जी हाँ, वो सुनेंगे आप।
2: गाना आपकी
1: क्या बजेगा आज? कर
2: जी आज या कल दोनों में कभी भी आ सकता है 5 से 7 के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: गुड मॉर्निंग सोनी मैम।
2: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसे हैं मैम?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
2: जी जी, तो क्या हो रहा था अभी?
1: समय हो गया तो ट्रैक करते करते अब लगी।
2: अच्छा अच्छा,
1: और अभी उधर क्लास ले रहे थे तो बच्चों की टिफिन हुई तो बोले के ट्रैक करके जल्दी लग जाती तो सुबह जल्दी लग गई।
2: ये बढ़िया है, लग गया ना।
1: जी
2: जी,
1: आज सुना दीजिए मैम नगीना फिल्म का गाना, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।
2: जी,
1: तूने बेचैन जितना ज्यादा किया, ये तेरा हो गया मीन तेरी हो गई। जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रिमझिम के जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर हैं देश विदेशों में सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
2: चलिए तो प्ले करेगा ना?
1: जी मैम, मैं कौन बोल रहा हूँ समझ गए ना मैम?
2: सुधीर कॉल बात कर रहे हैं।
1: जी जी जी, बिल्कुल मैम।
2: जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
1: थैंक यू मैम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम नंबर 204 FM में। चाहे पहले वहाँ से साइड हो जाइए जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: अनूप कुमार, ग्राम त्रैका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड से बोल रहे हैं
0: जी। क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: खाना आना खा के लेती थी।
0: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: अख मेरी यार की दुखी आँखों में आ गई लाल।
0: एक बार और बताइए नाम गाने का।
1: अख मेरी यार की दुखी आँखों में आ गई लाल।
0: और सुनवाना भी है
1: ना?
0: गाना सुनवाना भी है?
1: हाँ सुनवाना है।
0: तो प्ले करे गाना आपके?
1: हाँ प्ले कर दूँ।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: रिकॉर्डिंग ना सर?
0: जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है, शाम को चलेगी 5 से 7 के बीच में।
1: हाँ
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय चॉइस में कॉल।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्कार सर।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: हमको गाना सुनना है सर।
7: जी सुनवाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
6: नाम गाने का है करीमा पांडे की आवाज में, नथिया नथिया लेला उधार राजा जी, रास्ता चली ले तो मांगेला सुनार राजा जी।
7: और सुनवाना भी है
6: जी। श्रवण साह एक दोस्त है बगल में, वो रेडियो भी बनाते हैं और रेडियो वो भी रखते है, हम दो आई रेडियो रखते हैं।
7: चलिए तो चेक कर रहे हैं गाना
6: जी। मेरा नाम यह है जोगी शर्मा और मेरा घर एक डरवा
7: जी।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कॉल

एकरा में राजन भैया मरद लोग के दोस्त नहीं थे। जब गाना नहीं के गढ़ल रहत आ जब उनका भी पैसा नहीं के रहत त मेरा रु कैसे उनका के कहल जाला इमोशनली ब्लैकमेल करत गाना खाती आ कैसे।

हम सब सवर के अपना सखी लोग के साथ बाजारे जाइला आ जब भी वो देखेला तो सबके सामने हमरा के टोके लागेला तातना सजल सवरल के का फायदा कि लोग कहेला कर्जा कार के बने ले बड़ी तारा ढेर पता बा सच्ची

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी जी सोनी जी, क्या हाल चाल?
3: बिल्कुल बढ़िया रहो, वो बताए कैसा बने?
2: ठीक बढ़िया। पहला कॉल लग रहा?
3: हाँ हाँ, पहले कॉल है।
2: तो बात है कहीं मन बता दे रहा है, कहीं देखे बना सब लगन चल रहा था बाकी ना लगन चल रहा है ना?
3: लगन तो शुरू है भाई, था बर्फ होता नहीं आवा।
2: आप लोग के तरफ बारिश भी बहुत हो रहा है एकदम पूरा एकदम
3: काले भाई रहे बारिश बढ़िया वाला एकदम
2: काला भाई रहे ना। ऐसे हम एकदम ठंडा रहता रात में, हम 3-4 दिन से बहुत ठंडा रात रहा था। हम एक तरीके निकाले के पड़ गई
3: सब सब चीज के रखा गए रहे, लेकिन अब सोचल जाते रहे ना निकल जाए, बाकी इतनी ठंडा हुई तो रखे के उड़ाई के पड़ गए निकाल
2: के बर्दाश्त होगा ना करा।
3: चलिए तो बता दी गाना कौन सुने के बाद?
2: गाना सुने के बाद धर्मवीर मूवी के।
3: कौन मूवी के?
2: धर्मवीर।
3: अच्छा।
2: ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। और सुना एक बार सबसे पहले रामा जी प्रसाद को और नूर आलम भाई को, सगीर आलम भाई को और मनान भाई को और जितना रिमझिम वाला था सबको।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4
0: का। उमा शंकर दिल्ली से।
1: जी जी कैसे हैं उमा शंकर जी?
0: ठीक बा
1: जी।
0: और सब मौसम मौसम कैसा बा?
1: तो बढ़िया बा। यहाँ
0: आज छुट्टी मरले रही है, ऐसे कहिए कि तनी बात कर ली।
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया कहनी है जी। तो गाना कौन सुने के बाद?
0: गाना हो भरत शर्मा के बा, होता है शरीर आत्मा है गौरैया
1: जी। और सुनवाई के भी बा?
0: सुनवाई के बारी हमारे धर्म पत्नी बारी सविता देवी।
1: अच्छा अच्छा।
0: भाई बा धनेश मिश्रा, रवि जहाँ हुई तहाँ रवि सुनी, और हमारा संगे बहुत लोग बा काम करे वाला वो लोग सुनेला।
1: अच्छा।
0: एगो बारन बैजनाथ शर्मा वो सुनेला
1: जी। चलिए
0: और सब बढ़िया बना।
1: जी जी सब बढ़िया बा। गाना प्ले करी?
0: हाँ जी, हाँ जी सुना दी। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: दीदी नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं सविता बोल रही हूँ दिल्ली से।
2: जी कैसी हैं सविता जी?
1: ठीक हूँ।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी काम धंधा करके बैठी हूँ, क्या होगा।
2: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: रोटी। रोटी बेलाएंगे परी।
2: और सुनवाना भी है?
1: सुनवाना भी है। हाँ, धनेश कुमार मिश्रा।
2: जी जी चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइक है इसमें कॉल। Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: हेलो
1: जी बाबा आपका है जी मैं राजीव यादव ग्राम राठ मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से और 2 महीने बाद हो सका है शामिल हो रहा हूँ
0: जी। तो क्या हाल चाल है?
1: हाँ बहना जी तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा व्यस्त रहे, अभी एकदम ठीक ठाक है। घर में मम्मी पत्नी बच्चे सब कुशल मंगल में है।
0: चलिए बढ़िया बात है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: गाना सुनेंगे उज्जैन के आगे जी, उज्जैन के पीछे जी, उज्जैन के आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ कसम से जी जा जी।
0: और सुनाना भी है?
1: हाँ बहना जी, हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी मथुरा वृंदावन से हैं, राम संस्कर्मा जी हैं, श्री यादव जी हैं, उदय भान पाल जी हैं, अनुप कुमार राजपूत जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, पालन यादव हैं और रेडियो झिमझिम की प्यारी बहना आपको इसी गीत में शामिल कर रहे हैं।
0: गाना
1: कुछ लाइनें कह दें बहन, इजाजत हो तो। हर पर्वत को झुका नहीं सके, हर दरिया को सुखा नहीं सकते, आप हमें भूल जाएं भले ही, लेकिन हम रेडियो झिमझिम को भुला नहीं
0: प्ले कर रहे हैं गाना
1: जी। बहना जी काम नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: सलामुअलैकुम।
6: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: थैंक यू मैम। मैं अहमद अली, सरिया वार्ड नंबर 1। कैसी हैं मैम?
6: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम लोग भी अच्छे हैं। तबीयत अच्छा है ना?
6: जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया है।
5: अभी तो गर्मी बढ़ रही है यार,
6: फिर भी ठीक ही है मौसम आज।
5: हवा चल रही है,
6: हवा ठंडा ही चल रहा है, गर्म हवा नहीं है।
5: और बताए, नाश्ता पानी हुआ है क्या मैम?
6: जी हाँ, बिल्कुल हो गया है, अभी तक बाकी थोड़ी रहेगा।
5: हाँ, आज मेरे को सॉन्ग सुनाइए सूर्या मूवी से, प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल सामने।
6: सुनाना भी है?
5: हाँ, सुनाना है। सबसे पहले तो आपको, अतरी को, कमरान रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रेडियो रिमझिम यहाँ से भी सुन रहे हैं।
6: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
5: थैंक यू मैम। सलाम अलैकुम,
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल की।

0: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: क्या हाल है?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मेरा भी बढ़िया है। आप भूल गए थे, गणेश आप भूल गए हैं?
1: बिल्कुल नहीं भूले हैं, भूले होते तो नाम पूछते नहीं।
0: नहीं मेरे दिन साहब तो भूल गए हैं।
1: ना ना बिल्कुल नहीं भूले हैं, आप नहीं आ रहे हैं शो में।
0: क्यों, मैं अभी काम में मिले थे, जानते हैं कि शादी ब्याह में थोड़ा फंक्शन हो जाता है, इधर आइए इधर आइए।
1: समझ रहे हैं,
0: अभी तो टाइम नहीं है, अपन जा रहे हैं पूजा करने। मतलब आज दूसरा कॉल में मेरा लग गया, एक बार दूसरा कॉल में लग गया।
1: चलिए बढ़िया है, मन से किए इसलिए लग गया।
0: आप नहीं आए शादी में, ये बात तो नहीं मिली थी।
1: नहीं आ पाए, मौसम भी देखे आप कैसे हो गया था।
0: चलिए मेरे बहुत बढ़िया खनि शादी भगवान के।
1: जी जी, अभी तो जिसका शादी है उसका हाथ कलेजा पे ही है कि कब क्या हो जाए, बारिश आ जाए तूफान आ जाए। तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: कोई भी बता दीजिए, मंदिर का है कोई भी बता दीजिए।
1: नहीं नहीं आप ही बताइए।
0: कोई भी बता दीजिए।
1: तो भी कुछ तो बताइए, हिंदी भोजपुरी किसके आवाज में?
0: हिंदी कोई भी बता दीजिए,
1: कोई भी
0: ये आप सुनते हैं।
1: अरे वैसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर के तरफ से अलाउ नहीं है, उनके तरफ से है कि गाना अगर कॉल आया तो गाना बताना ही है, नहीं तो फिर आप गाना नहीं बजाइए। हिंदी चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थोड़ा ध्यान दीजिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: करते हैं आपको।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
4: भागे भागे फिरते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो सोनी मैम, प्रणाम।
6: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: और सर?
6: सब बढ़िया, आप बताइए।
7: एक बिहार के नेटवर्क ना सुधरी क्या?
6: आप बताइए, बिहार के नेटवर्क सुधरी कि ना सुधरी, अब हम कैसे बताएं?
7: बिजली बताओता, एक बार फ्यूचर बताओता, एक बार
6: रिकॉर्डिंग करनी है पर तो कॉल आवाता टेई से बिजली बताओते
7: ना। ना तो बिजली तो बताओते, फिर स्विच ऑफ बताओता ना।
6: स्विच ऑफ कहे बताओते, इतना नहीं है पता हमारा।
7: ये बिहार ना सुधरी
6: ऐसे ना कहीं। तो गाना कौन सुने के बाद बता दी?
7: भोजपुरी सुने के बाद। अथी बबीता सागर के पूर्वी बजा दे चूल्हा लगे जोड़ी।
6: और सुनवाई के भी बात?
7: वे जितना लिसनर लोग सुनत लो सुनी लोग, खास करके रामा जी प्रसाद वाला वो सुन ली। और ये जब भैया भाई बोल रही बोलो
6: रवि के फोन अभी ना आई
7: बाजी बाली
6: तक कब ले जाए के बाद गाँव से उनका
7: कोई पता ना,
6: अभी पता ना। चलिए ठीक बा, कहीं जास तो फिर वही जैसे जुड़स घर पे तो टाइम मिलत ना बा।
7: ठीक तो
6: जी जी बिल्कुल। हेलो माई चॉइस में तो कोशिश करे नहीं कि हम गाना ना काटी,
7: जैसे ना 4-5 मिनट के तो ऑर्डर, 4-5 मिनट के बना ये सब थोड़ा लाइव लाइव शो होता है। बड़ा बड़ा होला
6: तो बड़ा बड़ा होला तो शुरू वाला जो बतिया रहला वो काट देवे नहीं, गानवा तो रहे करेला।
7: ये सब बाकी कोनो बेकार नहीं है, बढ़िया बा, तनी लंबा होला गाना लेकिन बढ़िया। चलिए ठीक ठीक बा,
6: ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के।
8: Keep talking.

0: बहुत ही अच्छे झाल वादक और कोरस हमारे छोटे बाबा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हम दिन से
1: भवानियों के संगीत लाइन में कम से कम 35 साल हो गए, लेकिन तोहरों एगो अलग स्थान था भोजपुरी में राजोड़ा में।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: साइन फिरदौस माधव।
3: नाम एक बार और बताइए।
2: साइन फिरदौस।
3: साइन फिरदौस जी, और कहाँ से बात कर रही हैं? साइन
2: माधव
3: जी। और क्या करती हैं आप?
2: अभी तो अपन फोन लगा देते
3: हैं। तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
2: ये सुना दीजिएगा, मुबारक मुबारक ये शादी तुम्हारी।
3: मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी
2: जी।
3: सुनवाना भी है?
2: सभी दोस्तों को आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं।
3: ओके, चलिए तो प्ले करें गाना आपके।
2: थैंक यू मैम।
3: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मैं कॉल।
2: बाय
3: बाय।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: हाय आईफोन वाला आजो जाके ब्याह कर, ब्याह के मजा लेबू दूसरा से आईफोन चलेबू हमर तोरी मैया के पहिया पूजी।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: हो।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है, क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेखे तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी, कोई ऐसा काय, कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वो अंदर से दुख फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं

अवश्यमेव भोक्तव्यम्। बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना ऋण चुकाना होता है, कर्मानुबंध। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल, तुझे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी, आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया बीच में दीवाल और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक, हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगाओ, मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश दे, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग, तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है। बैरागी के लिए सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पाएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई, भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले, तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है, तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज, घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए,
चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे, उनका इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया, महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा, वो डंडा लाओ बाबा जी का डंडा। अब वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे, ऐसे संत रोज पधारे भगवान तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा नाप के कंकड़ लाओ। अब वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूरी आराम से सो रहे, रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरे हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का, वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से तो वो उसका विनाश ही करता है, आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए, उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। तो उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, वो इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे, ठीक। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए लाखों की और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है, उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने ये व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी, संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे, देखो रसोई बन गई सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो अभी चूड़ी खोली, उनको तो था ना कि मोहरे हैं कंकड़। तो जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा, हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको, आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते, संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है, क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लेखे तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है ना, सांप को ऐसे धनुष के नोक से उठाया और बम्बूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक छेदा हुआ, वो आह भर करके मरा तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर। आह किसी की ना लेना जिंदगी में, कोई ऐसा काय, कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं, अब क्या करें। सुबह संत जन आएंगे सबके बीच में हमारी कि देखो इन्होंने, अब क्या करें। गए और संगम में जाके छलांग लगाए, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ।
अब तो उनको आके संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया, बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में, अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई, तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो, मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी, वहां गए जब संत सेवा की, तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर, मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी। शरीर छोड़ दिया, महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में उपभोक्तव्यम, बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना मगन रहना, क्या मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षिष्यामि, साफ खत्म, आगे पीछे लेना देना साफ खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर मेरा भक्ति भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है। जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है वो यही है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें आम हटा दो, तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए, आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए, जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण किए इसी में जो भोग ले भोग ले, आगे ना होना चाहिए। तो क्या करे, सर्वतो भावेन भगवान की शरण ले ले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्येन योगेन माम ध्यान तुपासते तेषाम अहम् समुद्धरता मृत्यु संसार। ये बड़ा कठिन है पार होना, कोई छोटी मोटी बात है। एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ नाम जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब ले, मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या अपराध किया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मार तो डालोगे ही आप 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की प्रभु ये क्या लीला है आपकी,
आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे। ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छा अवस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। आप देखो, अगर साप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया। भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान ने स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। अगर छुप करके उधर राम अवतार में बात, तो इधर ऐसे स्वीकार किया है भगवान ने। ऐसा कहीं नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं तो मैं अपने लिए, ऐसा नहीं दिखाया। नारद जी का हित किया पर नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। बंदरों ने ही सहायता की, जैसा बोले थे वैसा ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा को कम में भुगता देंगे, पर अब अगला शरीर ना मिले इसके लिए सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाए। जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें दो काम होते हैं, लेना और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उसे लेना है, और कोई नगद देकर सामान ले रहा है तो उसे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें उधार देना है। अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना है, लेने वालों पर जोर नहीं। लेने वाला तो जाओ, हम क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध नहीं, खत्म हो जाए, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो आपके सामने आता जाए, हटाते जाओ। लेने पर नजर मत रखिए और दुकान फौरन उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता, तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं। समझ रहे हो, उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, तो इनके पास पहुंच गए या सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। प्रभु कह रहे हैं, यश

0: तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जैसे वहां ज्ञानाग्नि से दग्ध कह रहे हैं तो अपने वृंदावन वासियों का प्रेमाग्नि से सब कर्म संस्कार दग्ध होते हैं। जिस समय आपके हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो लेश मात्र कभी तुम्हें दुख नहीं भोगना पड़ेगा। प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही दुख का नाश हो जाता है, महासुख। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, अशांति नष्ट हो जाती है, संसार ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती है। जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो हो सकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े। परिवार खिलाफ, शरीर रोगी, अव्यवस्था, बहुत बहुत कुछ, सब कुछ कह रहे हैं। इतना सब होने पर भी उसके हृदय में कोई भी दुख नहीं होता, ऐसा सामर्थ्यशाली भगवत प्रेम है। भगवान के चरणारविंद का जिसके हृदय में प्रेम है, भारी से भारी दुख भी उनको विचलित नहीं कर सकता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.